FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1998 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री

0: यादव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति है जुबैर खान की। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, माफ कीजिएगा 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग, कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। आठ बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग, लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 10 बजे सुनिए छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभदास वंची भूपाल श्री रामवर्मा कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरुनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरुनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियाँ लिखी, बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियाँ संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियाँ सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध है।

0: फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत जो राग बृंदाबनी सारंग पर आधारित था अभी आपने सुना। आवाजें थी हेमंती शुक्ला और येसुदास की। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पल।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

आज भी हमारा चर्चा का विषय रहेगा काजी नजरुल इस्लाम की जयंती। काजी नजरुल इस्लाम भारत और बांग्लादेश के महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें विद्रोह कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जयंती हर वर्ष 26 मई को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई जाती है। यह दिन उनके साहित्य, संगीत और देशभक्ति को याद करने का अवसर प्रदान करता है। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 26 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र के चुरुलिया गांव में हुआ था। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर साहित्य और संगीत की दुनिया में विशेष स्थान प्राप्त किया। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने और संगीत में रुचि थी। उन्होंने कम उम्र में ही गीत गाए, कविताएं और नाटक लिखना शुरू कर दिया था। नजरुल इस्लाम केवल कवि ही नहीं बल्कि वे समाज सुधारक भी थे। उनकी रचनाओं में अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। वे लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही ने लोगों में साहस,

चारों को याद किया जाता है। आज के समय में काजी नजरुल इस्लाम के विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने प्रेम, समानता, स्वतंत्रता और मानवता का संदेश दिया है जो समाज को सही दिशा दिखाता है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुछ स्थानीय समाचार। कॉलेज प्रवेश के आवेदन का आज अंतिम दिन। सभी सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने अब विद्यार्थियों को 26 मई तक आवेदन का मौका दिया है। पहले अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित थी। बार बार तिथि बढ़ने से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो दस्तावेज या ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। जेई और सीएमए भर्ती के लिए परीक्षा 2 जुलाई को। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एवं केमिकल एवं मेटालर्जिकल असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 2 की संभावित तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 2 जुलाई को होगी।

पीटीईटी के 1.26 लाख आवेदन, परीक्षा 14 जून को। बीएड कॉलेजों के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पीटीईटी परीक्षा 14 जून को होगी।

आइए अब जानते हैं आज के मौसम के हाल। आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में बढ़ने की संभावना है।

शादाब से कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। 8:15 पर आप सुनेंगे प्रगति पथ कार्यक्रम में बीमा सखी योजना के बारे में। इस विषय पर सुमेर मीणा शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम झालावाड़ से शालिनी पारिक की बातचीत आप सुनेंगे। 8:30 पर महिला और बहनों का अपना कार्यक्रम गणगौर आप सुन सकते हैं। चर्चा का विषय होगा काजी नजरुल इस्लाम की जयंती। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे खान पान में छुपा है स्वास्थ्य और मजबूती का राज। डॉक्टर अनामिका गौतम से पिंकी रावल की बातचीत। जानकारी की बातों में आप जानेंगे जन औषधि केंद्र योजना के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

श्रोताओं, ये थे कुछ स्थानीय समाचार। आइए अब सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे। चर्चा होगी काजी नजरुल इस्लाम जयंती पर। नेटवर्क ही नेटवर्क में युवाओं में अच्छे साथी का चुनाव। चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे रजत से कपिल की बातचीत। जानकारी में आप जानेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। आज के इतिहास से जुड़ी बातें, रोजगार सूचनाएं और आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से पुनः फिल्म संगीत। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। सजीव फोन इन कार्यक्रम में जैविक किचन गार्डनिंग, यमुतई बंसोड़े प्रगतिशील महिला कृषक झालावाड़, इनसे आप बातचीत कर सकेंगे। आठ बजकर 15 पर आप उन्हें सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत और रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। देव कोहली का लिखा गीत है और संगीत राम।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। देव कोहली का लिखा गीत है और संगीत राम

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन

0: आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो

0: दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं प्रगति पथ कार्यक्रम में बीमा सखी योजना के बारे में सुमेर मीणा शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम झालावाड़ से शालिनी पारिक की बातचीत। विषय है बीमा सखी योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम प्रगति पथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर शालिनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मंगलवार आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल कार्यक्रम प्रगति पथ, जिसके जरिए हर बार आप सभी को सरकार के द्वारा चलाई जा रही नई नई योजनाओं और उन योजनाओं का लाभ हम सभी कैसे उठा सकते हैं इसकी जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। इसी क्रम में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो महिलाओं के आत्मविश्वास, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमा सखी योजना की। बीमा सखी योजना केवल भविष्य की सुरक्षा ही नहीं बल्कि परिवार के भरोसे और आत्मनिर्भरता का भी आधार है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुमेर जी मीणा, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रमुख शाखा प्रबंधन के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैम। नमस्कार सभी
1: श्रोताओं। हम सुमेर जी से जानेंगे कि सखी बीमा योजना क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये हमारे लिए कैसे लाभदायी है, महिलाओं को इससे किस प्रकार लाभ मिलेगा और कैसे यह योजना सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में

सर्टिफिकेट, IRDA का एक एग्जाम होता है जो आपको क्वालिफाई करना रहता है। उस एग्जाम के बाद में हम आपको लाइसेंस इश्यू करते हैं जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम करती है, और उसके बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको

0: सर्टिफिकेट, IRDA का एक एग्जाम होता है जो आपको क्वालिफाई करना रहता है। उस एग्जाम के बाद में हम आपको लाइसेंस इश्यू करते हैं जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम करती है, और उसके बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको वित्तीय समावेशन, जैसे पहले अपन ने बात की थी, अपन को उसके एवज में क्या मिलेगा इसमें मैं बताऊँ आपको, तो इसका बेसिक सा अगर क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में 7,000 रुपये स्टाइफंड, जिसको बोलते हैं हम स्टाइफंड, मासिक भत्ता महिलाओं को मिलेगा पहले साल पूरे 12 महीने, दूसरे साल 6,000 और फिर 5,000, इस तरीके से उसको 3 साल हमें स्थायी भत्ता मिलेगा। और जो बनेगा, जो पॉलिसी वो करेंगे, जिस पे जो अर्निंग्स होंगी वो अलग से।
1: आपने जैसे बताया कि शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं, और करियर में इसकी क्या उपयोगिता है?
0: सबसे मेन बात, जैसा कि मैंने बताया, आपको 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम इस

0: से आप आके आपके कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जी मैम,
1: श्रोताओं, सच कहा जाए तो जीवन में सुरक्षा का एहसास सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब महिलाएं आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे बीच में उपस्थित सुमेर जी मीणा ने हमें दी, और ऐसा लगता है कि यह योजनाएं केवल आर्थिक सहायता ही नहीं है बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुमेर जी मीणा का, जिन्होंने बहुत सरल और प्रेरणादायक तरीके से हमें सखी बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद सुमेर जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
0: धन्यवाद मैम, थैंक यू।

सोच अगर अपनी रेवे तो जीवन के ताई उसे नई दिशा देबा को वा काम करे छे। हालांकि बीता दिना से दुखी होबो स्वाभाविक छे, सभी के साथ छे प्रक्रिया, क्योंकि हर अनुभव अपना मन पे गहरी छाप छोड़े छे। कदी परिवार की जिम्मेदारियां, कदी आर्थिक तंगी, तो कदी अपना सपना पाछे छूटबा को दर्द। बहुत सारी बेणियां ऐसी छे जिनने पढ़ाई लिखाई सब पूरी कर रखी छे, पण वे घर गृहस्थी में फंसे बाद फिर पढ़ न पाई, तो सोचे छे कि पहली पढ़ लेता तो अच्छो होतो, आज अपन नौकरी कर रहा होता या कहीं कहीं सर्विस कर रहा होता, अपना आत्मनिर्भर रहता। ऐसी कई तरह को जो छे उनके अंदर सोच रहे हो छे, तो ये अपना मन के ताए भारी बना देवे छे बाता। तो उनकी जगह पे अपन कहीं करा मिले और कि एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच अपन राखा, क्योंकि इन तरह की जो सोच हो छे, छोकी सोच, वह यही सिखावे छे कि हर अनुभव अपन के ताए तोड़बा न बल्कि मजबूत बनावा के लेके आओ छे। जो परिस्थितियां आज अपन के ताए कठिन लागे छे, वे ही काल अपना आत्मविश्वास की

न रेवे तो दुख भी स्थायी न रेवे। बीत्या समय के ताई आपन जद सीख का रूप में स्वीकार कर ले वहां तो मन में दबाव नहीं रेवे, मन हल्को हो जावे छे और आगे बढ़वा के आपन के ताई उसे शक्ति मले छे। जो बीत्यो छे वो सीखा गयो, जो छूट गयो वो समझा गयो। तो आज जो साथ

0: और याद आयो मरता है के मां की जो आज की जानकारी छे उनको विषय भी कुछ इसे मिलते जुलते ही छे। अपना स्वास्थ्य पे, खूबसूरती पे जो छे खान पान को काय प्रभाव पड़े छे, तो एक बारे में जानकारी दे रही छे डॉक्टर अनामिका गौतम, होम्योपैथिक डॉक्टर छे ये और झालरापाटन की डॉक्टर छे ये। और इनको बिना और करा अपन ई गणगुर कार्यक्रम में स्वागत और सुना यह जानकारी।
1: आपका हमारे इस गणगौर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज का जो हमारा विषय है बातचीत का वो है खान पान में छुपा है स्वास्थ्य और खूबसूरती का राज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, तो ये जो कहावत है किस प्रकार चरितार्थ है?
2: ये कहावत बहुत हद तक सही है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इसे मानते हैं। विज्ञान ये कहता है कि अगर हमारे पेट और दिमाग का कनेक्शन सीधा है, अगर बनते हैं जिससे सेरोटोनिन यानी खुशी वाला हार्मोन बनता है, इसलिए दही फल खाने से अपना मूड बहुत अच्छा रहता है। और जैसे अपन ज्यादा मीठा या फिर जंक फूड खाते हैं तो इससे शुगर लेवल बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा और थकान आती है। और ओमेगा 3 आयरन विटामिन बी की कमी से तनाव, डिप्रेशन, ध्यान न लगने जैसी कई दिक्कतें होती है। और आयुर्वेदिक कहता है कि भोजन 3 तरह का माना जाता है, सात्विक भोजन, रासिक भोजन और तामसिक भोजन। जो सात्विक भोजन आता है उसमें आता है फल, सब्जियां, दूध, मेवे, ये जो होते हैं ये अपने मन को शांत, एकाग्र और सकारात्मक बनाते हैं। रासिक भोजन में ज्यादा मिर्च मसाले, खट्टा, तला भुना आता है जिससे बेचैनी, गुस्सा जैसी दिक्कतें अपन को आती है। तामसिक भोजन में जैसे अपन ज्यादा तला भुना, मांस, मदिरा ये सब आते हैं जिससे अपने शरीर में आलस, नकारात्मक और गुस्सा आदि ये सब लेके आते हैं। और जैसे अपन दिन भर अगर अपन समोसा, कोल्ड ड्रिंक जैसे अपन चीज लेते हैं तो अपने शरीर में भारीपन और दिमाग में सुस्ती आती है। जैसे ही अपन हल्का भोजन खाते हैं जैसे दाल, चावल, सब्जी खाने से अपना शरीर हल्का और मन शांत रहता है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि जैसा अपन खाना खाते हैं वैसा ही अपना मन होता है। मन पर सिर्फ खाने का ही नहीं, माहौल और सोच का भी बहुत असर पड़ता है।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर। इसी के साथ यह भी आप बताएं कि खान पान का सीधा संबंध हमारी त्वचा, हमारे शरीर, हमारी खूबसूरती से किस प्रकार होता है?

हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है। जैसे कि अगर अपन पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो इससे अपनी त्वचा रूखी, डल्स, पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तला

0: असर पड़ता है।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर। इसी के साथ यह भी आप बताएं कि खान पान का सीधा संबंध हमारी त्वचा, हमारे शरीर, हमारी खूबसूरती से किस प्रकार होता है।
0: हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है। जैसे कि अगर अपन पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो इससे अपनी त्वचा रूखी, डल्स, पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तला भुना खाने से और ज्यादा चीनी खाने से अपने शरीर में टॉक्सिन पदार्थ बढ़ते हैं, जिससे चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। और विटामिन सी और ई ई का स्रोत अगर अपन लेते हैं, जैसे संतरा हो गया, आंवला, बादाम, खाने से कोलेजन तत्व बढ़ता है, जिससे अपनी त्वचा जो है टाइट रहती है, झुर्रियां देर से आती है। और पानी पानी बहुत अच्छा स्रोत है, अपने शरीर को हाइड्रेट बना के रखता है। कम से कम अपन को पूरे दिन भर में 8 से 10 गिलास तक पानी पीना चाहिए, जिससे प्राकृतिक चमक आती है और ये महंगे मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है।
1: बहुत अच्छा बताया आपने कि खान पान का जो संबंध है वो हमारी त्वचा से, हमारी खूबसूरती से भी होता है। खाने की तो चलो बात है ही सही, लेकिन अगर पानी की भी कमी रहती है तो उससे भी जो हमारी स्किन पर काफी प्रभाव

0: डाइजेस्ट होता है, जिससे कि शरीर में गंदगी ज्यादा बढ़ती है, इससे पिंपल्स, डलने, चिड़चिड़ापन ये सब आता है।
1: मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपने जो भी बातें बताई है उसके आधार पर हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अनाज, दूध, दही, इनका उपयोग करना चाहिए। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारा शरीर जो है, सुंदर और फिट बना रहता है। लेकिन ये आधुनिक समय में हम देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं वो जंक फूड और पैकेज्ड फूड की ओर आकर्षित रहते हैं। क्या ये सही है? और यदि नहीं तो घर घर में ही इनका कोई विकल्प मौजूद है जिनसे जीभ का स्वाद भी बना रहे और खूबसूरती भी बरकरार रहे?
0: जी हाँ, बहुत अच्छा वैकल्पिक मौजूद है अपने घर में, अपने रसोई घर में। जैसे बाजार में, जैसे अपन चिप्स की जगह भुने मखाने खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, जिससे प्रोटीन मिल जाता है, स्किन भी टाइट रहती है। कोल्ड ड्रिंक की जगह अपन नींबू शिकंजी या फिर आम पन्ना ले सकते हैं, जो विटामिन सी अपन को मिल जाता है। विटामिन सी जो होती है स्किन टाइटनिंग का बहुत अच्छा स्रोत होती है, जिससे स्किन अपने आप ग्लो करती है। और जैसे बाहर बच्चे जो चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, उसकी जगह अपन गुड़ या मूंगफली की जो चिक्की आती है वो ले सकते हैं, इससे आयरन मिल जाता है और चेहरे की लालिमा भी बनी हुई रहती है। और जैसे फाइबर के लिए देखें तो अपन सूजी या फिर वेज उत्पम ले सकते हैं। उत्पम में अपन ढेर सारी सब्जियां डाले तो आपको प्रोटीन, फाइबर ये सब मिल जाएगा। बाहर की जो तली भुनी चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, ये अपने शरीर और पेट के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी नहीं होती है। अगर पेट अच्छा रहता है तो स्किन अपने आप ग्लो करती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेट रहें, तो इससे अपना शरीर भी अच्छा रहता है। 7-8 घंटे की नींद लें, टाइम पे सो जाएं और प्राणायाम करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है।
1: के कहने का मतलब यह है कि अगर खान पान का सही समय का ध्यान रखा जाए तो स्किन भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जो खूबसूरती लोग महंगे प्रोडक्ट या पैसा खर्च करके प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको वैसे ही मिल
0: घर पे ही
1: जाएगा।
0: मिल जाएगा। हाँ,
1: लेकिन बस जरूरत है कि इन बातों का वो ध्यान
0: ध्यान
1: रखें।
0: रखें।
1: और अब बातचीत के अंतिम पड़ाव में हमारी बहनें जो घर पे कई तरह के घरेलू नुस्खे अपना करके अपने चेहरे को, अपने शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं, सुंदर बनाती हैं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो जो खूबसूरत बनी रहें?
0: चेहरे पर ग्लो सिर्फ पार्लर से ही नहीं आता, किचन से भी आता है। खाने में 5 खास तत्व रोज शामिल करें, विटामिन।
1: अब बातचीत के अंतिम पड़ाव में हमारी बहनें जो घर पे कई तरह के घरेलू नुस्खे अपना करके अपने चेहरे को, अपने शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं, सुंदर बनाती हैं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो जो खूबसूरत बनी रहें?
0: चेहरे पर ग्लो सिर्फ पार्लर से ही नहीं आता, किचन से भी आता है। खाने में 5 खास तत्व रोज शामिल करें, विटामिन। जो सी होता है वो ग्लो बूस्टर होता है। जो सुबह आंवले का रस अपन सुबह खाली पेट लें तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। पेट साफ रहता है, अपने चेहरा अपने आप ग्लो करता है। और जो विटामिन ई है, जो अपने खूबसूरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मिल जाता है अपन को बादाम से या पालक से। ये चेहरे को सॉफ्ट और यंग दिखाता है। और विटामिन ए जो होता है वो नेचुरल रिपेयर होता है, जो नई सेल्स बनाता है, पिंपल्स और डलनेस को भी हटाता है। जो विटामिन ए का स्रोत है वो सबसे अच्छा गाजर का जूस है, सलाद, पका हुआ आम अभी बहुत आ रहा है, तो ये आपको चेहरे को एकदम फ्रेश और पिंपल फ्री बनाता है। और जो ओमेगा 3, अपन को अखरोट, अलसी, देसी घी, आधा चम्मच ये सब लेके अपन अपने आप अंदर से भी मॉइस्चराइजर करते हैं अपनी स्किन को, जिससे अपनी स्किन चमकती है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी बहनों के बीच में, हमारे श्रोताओं के बीच में आपने दी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपने खान पान का ध्यान जरूर रखेंगे और महंगे प्रोडक्ट और ये जो दवाइयां हैं महंगी महंगी, इनसे अपनी सुंदरता बनाने की बजाय वो अपने खान पान में, रूटीन में इस तरह से अपना खान पान रखेंगे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और खूबसूरती भी बरकरार रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।
2: और अब आपने जो जानकारी सुनी

0: घर अपने आधा चम्मच ये सब लेके अपन अपने आप अंदर से भी मॉइस्चराइजर करते हैं अपनी स्किन को, जिससे अपनी स्किन चमकती है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी बहनों के बीच में, हमारे श्रोताओं के बीच में आपने दी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपने खान पान का ध्यान जरूर रखेंगे और महंगे प्रोडक्ट और ये जो दवाइयाँ हैं महंगी महंगी, इनसे अपनी सुंदरता बनाने की बजाय वो अपने खान पान में, रूटीन में इस तरह से अपना खान पान रखेंगे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और खूबसूरती भी बरकरार रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।
2: और अब आर आपने जो जानकारी सुनी कि खान पान आपनों कसो हो जिसे आपन खूबसूरत भी दिखा और स्वस्थ भी रह सका, तो आपने ध्यान से कताई सुनी होगी और आप भी अपना खान पान को ध्यान रखेगा, खास तौर से गर्मी का ही मौसम में। और अब फिर से लेवा एक छोटो सो अंतराल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाए।

के आ काय छे तो बेणे ओरिया भारत सरकार की एक जन कल्याणकारी पहल छे जिको आधिकारिक नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है। ई योजना को उद्देश्य आम नागरिका के ताए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध करावो छे। बेणे और यह योजना औषधि विभाग के अंतर्गत चाले छे और इमें जो ब्रांडेड दवा छे उनके समान ही प्रभाव वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होवे छे। अब दवाइयां कौन कौन सी हो छे बेणे और तो जैसे जो आम समस्या अपन के ताए रहवे छे ज्यादातर जैसे बुखार दर्द सर्दी खांसी मधुमेह उक्त उच्च रक्तचाप हृदय रोग महिला और बच्चा की दवाइयाँ कुछ कुछ जो दवाइयाँ हो जैसे सर्जिकल स्वास्थ्य उत्पाद भी तो इस तरह की दवाइयाँ योजना के अंतर्गत प्रदान की जावे छे। तो उम्मीद करूँ छो बिना और के योजना को लाभ आप भी जरूर लो और इस तरह का केंद्र कई जगह खुलियावे छे तो आप जरूर लाभ लोगा। और अब कार्यक्रम का अंत में बस यही कहना चाहूँगा बिना और के गर्मी को मौसम चल रो छे लू तपन काफ़ी छे जो भी अपना जरूरी काम छे वे अपन ठंडाई के टाइम पे ही कर ला तो अच्छे रहे क्योंकि जो काम अपन के ताए अपन टाइम से कर लेवा चाह तो उनसे अपनो काम भी हो जाओगो और अपना अपना स्वास्थ्य पे जो छे उनको प्रभाव भी न पड़ोगो क्योंकि अभी जितना अपन बच के रहूंगा उतना ही अच्छा। और जब जरूरत पड़ रही है घर से जावा की बहुत ज्यादा जरूरी है तो पूरी सेफ्टी के साथ अपन घर से बाहर खड़ा जैसे कि अपन स्कार पहुंचे उनके साथ में रखा चश्मा आँखा की बचत चश्मा से हो जाओ तो अपन चश्मो भी छतरी साथ में रखा इनके अलावा जो दस्ताना ऊँचे और गर्मी को जो कोट ऊँचे उनको वो अपन के ताई इन गर्मी से छो की तरह बचाओ देगो। तो आज की जो चर्चा छे यहीं तक बिना और क्योंकि समय जो छे इशारों कर रहे छो के आज की आज को गणगौर कार्यक्रम यही समेट ला अगले कार्यक्रम में फिर मिलांगा नई चर्चा गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए आपकी बहन पिंकी दुआ गया राम राम।

तो ई तरह की दवाइयाँ योजना के अंतर्गत प्रदान की जावे छे। तो उम्मीद करूँ छू बेणिया और के ई योजना को लाभ आप भी जरूर लो, और ई तरह का केंद्र कई जगह खुलिया हुआ छे तो आप जरूर लाभ लोगा। और अब कार्यक्रम का अंत में बस यही कहना चाहूँगा बेणिया और के गर्मी को मौसम चल रो छे, लू तपन काफ़ी छे, जो भी अपना जरूरी काम छे वह अपन ठंडाई के टाइम पे ही कर ला तो अच्छे रहे, क्योंकि जो काम अपन के ताए अपन टाइम से कर लेवा चाह तो उनसे अपनो काम भी हो जाओगो और अपना अपना स्वास्थ्य पे जो छे उनको प्रभाव भी न पड़ोगो, क्योंकि अभी जितना अपन बच के रहूंगा उतना ही अच्छा। और जब जरूरत पड़ रही है घर से जावा की बहुत ज़्यादा जरूरी है तो पूरी सेफ्टी के साथ अपन घर से बाहर खड़ा, जैसे कि अपन स्कार पहुँचे उनके तय साथ में रखा, चश्मा आँखा की बचत चश्मा से हो जाओ तो अपन चश्मों भी छतरी साथ में रखा, इनके अलावा जो दस्ताना ऊँचे और गर्मी को जो कोट ऊँचे उनको वो अपन के ताई इन गर्मी से छो की तरह बचाओ देवगो। तो आज की जो चर्चा छे यहीं तक बिना, और क्योंकि समय जो छे इशारों कर रहे छो के आज की आज को गणगौर कार्यक्रम यही समेट ला, अगले कार्यक्रम में फिर मिलांगा नई चर्चा गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए आपकी बहन पिंकी दो आज्ञा, राम राम।

0: पंचमहा की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत SC ST लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों के नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर प्वाइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं

0: फैशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलूफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

0: फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की

जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

लगातार फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

तक कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: क्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बैनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के
1: जरूर
0: दौर में।
1: जरूर।
0: अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले, थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स, जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम।

0: कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा, तो
0: अच्छा
1: ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज़ वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कन्फर्म कीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: याराना।
0: किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हों।
1: हाँ मेरे पास ज़्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आता है।

0: मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
1: जी
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
0: हाँ
1: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे
1: हाँ,
0: बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे।

0: T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
1: पॉजिटिव,
0: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
1: हाँ
0: होता
1: रेंज के
0: है,
1: बाहर,
0: रेंज
1: हाँ
0: के बाहर,
1: हाँ
0: तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज़ डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
1: अगर
0: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
1: जैसे
0: दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
0: जी
1: इसको हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
1: हाँ
0: लेवल क्या है
1: लेवल
0: बीमारी
1: क्या
0: का।
1: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
0: जी
1: इसको हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे
0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या-क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए?
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज़म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज़म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे
1: हाँ
0: बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड, पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का।
0: जी
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है, टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे।

0: तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है. हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है.
1: जी
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है.
0: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा.
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है लेकिन

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर

0: प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है. कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती. शरीर भी वही है. तो जैसे ही कोई टॉक्सिस बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी. कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर. बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन. रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं.
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए. अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए.
1: जी जी.
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं.
1: जी.
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़. जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़. तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है. एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री. आपके जीवन शैली में वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन. रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं.
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए. अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए.
1: जी जी.
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं.
1: जी.
0: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़. जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़. तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है. एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री.
1: इतिहास क्या है परिवार का?
0: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे.
1: हेरिडिटी कैरेक्टर.
0: हेरिडिटरी. अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से ये गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है। वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब
0: पसीना।
1: पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी
0: एक
1: है,
0: इंडिकेशन होता है
1: एक
0: उसमें।
1: इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी
1: आयोडीन का
0: मेहनत करने पे ही वो थक जाता है।
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट
0: जी
1: इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा,
0: क्या बात है।

0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी अगर उससे देखा जाए वो बेचारा सा
1: मायूस
0: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज़ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज़ बंद कर
1: डॉक्टर
0: दीजिए।
1: साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है,
1: जी
0: ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
1: जी
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल
0: मौसमी
1: है वो खाना
0: खाना
1: चाहिए।
0: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज़्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूँगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊँगी?
1: बहुत प्रेशर
0: नहीं।
1: पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, टी थ्री किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो
0: यस,
1: क्या बात है।
0: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
0: ज़रूर।
1: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
0: उतना ही है।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
0: सबसे पहला चीज़ जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो
0: बड़ी
1: चाइनीज़ फूड में
0: खतरनाक
1: ज़्यादा
0: है।
1: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
0: हाँ, कम
1: इतना तो
0: कर
1: खरीद
0: दीजिए।
1: सकते।
0: मैं ये
1: जी
0: भी नहीं बोलूँगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल।
0: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका

0: मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
1: जी
0: मन
1: जी
0: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
0: एक
1: चलते
0: अच्छा सा
1: चलते।
0: गाना, चलते चलते मैं हूं।

डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुन

नेचुरोपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: लीजिए प्रस्तुत है आज के इस प्रोग्राम रंग तरंग का पहला गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से। गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: डॉक्टर लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, वो लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
1: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
1: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति

0: इसे अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को
1: जापानी लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,

0: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: जय जेरापुर, जय भारत।
4: जय जेरापुर, जय भारत।
1: राजा जोरावर सिंह।
5: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
6: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
5: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
6: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
7: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
7: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
7: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
7: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
7: जी महाराज।
5: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
8: होशियार,

0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर

0: John Armour! What all? Don't charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश। सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको। चलो
3: मुझे। छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: वाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर

0: कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। दोपहर के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल

0: क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया।

कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं। फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारे लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बच गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है, क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग के ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे

ता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं ज़रूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली इमोशनली, तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरत

हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहा आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस

आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि एक हो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्म आया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में 2 से 3 अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत

व्रत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों

हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: aimed at improving safe and accessible transport facilities in the state. She will also visit the orchidarium at Ridge Park to witness Sikkim's rich ecological and floral heritage. Later in the day, she is scheduled to visit the Namgyal Institute of Tibetology, known for preserving rare manuscripts and Buddhist cultural artifacts. Millions of people from across the globe, including India, are performing Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of the five-day annual pilgrimage yesterday. Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the khutba.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: will become

खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा 30 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी

0: देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया।

0: संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे

0: अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें,

जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम

0: अग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना
1: बिल्कुल
0: चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर
1: जी
0: जरूर दें, उसको
1: बिल्कुल
0: देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका

0: भीतर अच्छाई लाता है, तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं, तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे, तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं, तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना

0: तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं, तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे, तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं, तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना, क्या बात क्या है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाते हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।

आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना

0: था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल,
0: सबकी।
1: आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जन्मासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल, वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते
1: बिल्कुल,
0: थे,
1: और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते
1: थी।
0: थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल,
0: तरह के भी उनको
1: रूठने
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई
0: होती
1: नाराज हो जाता
0: थी
1: था उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
0: तो
1: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना
0: संभाल
1: पड़ता था क्योंकि
0: जी
1: वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते
0: जी
1: थे ना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक कंपोजर, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग, गाना बजाना ही उसको, उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में
1: वाद्य वृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नी जा नी दा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता है,
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
0: गामा पादा, अच्छा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूज़िक में हैं, एक म्यूज़िक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना,
0: हाँ,
1: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की, कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज

क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे।

0: में आती है वो एक कुटुंबस।
1: अभी आर्टिस्ट है
0: हाँ
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
0: जी,
1: और भी बदमाश
0: और भी।
1: होता
0: तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे
0: शर्मा रहे
1: बचपन
0: बता
1: में। हाँ थोड़ा सा
0: रहे
1: शर्मार हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी से
1: बहुत
0: फिल्में
1: चुराए,
0: देखी है।
1: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है,
0: ओहो
1: प्रिंसिपल
0: हो
1: को भी थोड़ा परेशान किया है।
0: थोड़ा
1: हाँ इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर, शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया
0: अरे बाप रे।
1: था।
0: फिर
1: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता
0: लेकिन
1: दूं,
0: किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
1: आपने
0: खतरनाक
1: पकड़
0: वाला किया
1: लिए,
0: होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी
1: मैं
0: जी
1: बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने। इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ तो बदमाशी की है सर।
0: जी
1: हाँ कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट
0: और जमाना भी सख्ती का
1: थे,
0: था।
1: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुँचे
0: कहीं और
1: नहीं।
0: पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियाँ रहीं, फिर खेलने चले गए,
0: जी
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियाँ की हैं बचपन में।
0: हाँ।
1: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या
1: तो,
0: हाल
1: बाप
0: होता?
1: रे दुनिया अलग और मैं
0: कितना
1: अलग।
0: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
0: जी
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
0: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी
1: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगी पर

अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था,

0: स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड.
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए.
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह.
0: शहनाई और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी.
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में.
1: गजब.
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी. अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास.
1: जी बिल्कुल.
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से.
1: अरे गजब.
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं. और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में. हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं.
1: जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते. तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है.
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी. उनका आशीर्वाद है
1: जी.
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी. सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था. 4 बजे हम तीनों को उठाते थे. वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए. अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है. और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है. ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था.
1: जी जी.
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से. तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले.
1: वाह.
0: तो सा सा सा रे गा मा पा द नी सा नी ला मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4, 5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी लाख जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है
1: बिल्कुल।
0: ये, और मैं एक ही है। मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का, कि
1: जी
0: ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे, इसको
1: जी जी जी
0: ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं,
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं।

0: तो हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा।
0: इसको ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ये नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी।
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना, उसके लिए
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी।
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं। तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं
1: कृष्णा
0: लाया इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी,
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले।
0: हमेरे साथ मेरे हमेशा साथ रहता है, ये
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी
0: हाँ
1: बात है।
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी।
0: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना।
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी जी जी
0: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: वाह वाह वाह वाह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कमाल का किया आपने। ये गाना सुनते हैं।
1: पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है,
1: बहुत अच्छा गाना है।

0: जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो

0: 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया। तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
1: जी जी जी,
0: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
1: वो उम्र भी बहुत छोटी थी,
0: हाँ काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब,
0: वो ये आशीर्वाद है।
1: जी जी जी,
0: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
1: उनके सवाल पीने जाई
0: जी,
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्यौहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
1: और वो ठेठ बनारसी,
0: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो,
1: गजब।
0: हाँ तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी जी,
0: अब बहुत सारे लोगों वो गाना ही नहीं पता,
1: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का,
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: तब का सुना हुआ है,
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
1: हुली आई रे कन्हाई,
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी,
0: तो वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान,
0: हाँ रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो,
1: बिल्कुल,
0: ओहो हो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
1: जी,
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है,
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर,
1: अरे वाह,
0: इन द टीम, यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात।

0: थे
1: जी
0: दारा
1: जी
0: जी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मज़ा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी,
0: तो पूरा एक हमारा चक्र घूम
1: चक्कर
0: जाता था
1: लगता
0: ऐसा। तो वहाँ पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होकर और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस
0: म्यूजिक
1: अकॉर्डिंगली।
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्ज़ाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ,
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं।
0: सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज़्यादातर,
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, मैं रफिया खान
1: और मैं कपिल सुरेलिया।
0: स्वागत है आप सभी का अपने दिल अजीज कार्यक्रम युवाणी में, जिसमें ज्ञान सूचना मनोरंजन के साथ ढेर सारी चर्चाएं और ज्ञान विज्ञान की बातें और किसी न किसी युवा साथी की बातचीत आज फिर हम लेकर हाजिर हैं। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें अपने आप का, अपने अपनों का, सभी का ध्यान रख रहे होंगे और खूब सारा पानी पी रहे होंगे और हाइड्रेटेड होंगे।
1: पानी के साथ साथ अगर अपन जूस पिए तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है वो इस बार काफ़ी गर्मी है। बताया जा रहा है कि इस बार अन्य लेलों का प्रभाव जो है वो ज़्यादा रहने का अनुमान है, जिससे कि गर्मी ज़्यादा रहेगी।
0: और अभी तो नौतपा के दिन भी चल रहे हैं
1: जी,
0: तो दोस्तों आपको खूब सारा हाइड्रेशन अपनी बॉडी में रखना है, सभी का ख्याल रखना है और जितने भी पक्षी बाहर हैं उनका भी ध्यान रखना है, जितने एनिमल्स हैं उनकी भी केयर करनी है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है। युवाएं हैं और युवाओं की जिम्मेदारी हर एक वर्ग के लिए है, हर एक समाज के लिए है, हर एक इंसान के लिए है।
1: जी बिल्कुल रफिया, ये तो आपने सभी सही कहा कि पक्षियों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि पक्षी हम समझदार हैं, हमें सोचना चाहिए कि अभी जिस तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो पानी कहाँ से पिएंगे, किस तरीके से उनका गुजारा चलेगा। तो ये हमें सोचते हुए हमें पेड़ों के पास पानी की व्यवस्था, गाय वगैरह किसी के लिए हो तो उसके लिए टंकी की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, परिंदे बांधने चाहिए, उन चहचहाते जो पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो गर्मी का मौसम है इसमें हमारा और आपका ये जो 5 बजे का वक्त है ये बिल्कुल नहीं बदला है, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा युवाणी और युवाओं के साथ का जो सिलसिला है वो हमेशा इसी तरह कायम रहेगा। तो कपिल, आज के चर्चा के विषयों की बात कर ली जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे काजी नसरुल इस्लाम की जयंती के बारे में,
1: साथ ही नेटवर्क ही नेटवर्थ युवाओं में अच्छे साथी का चुनाव है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
0: इसके बाद में ज्ञान विज्ञान सेगमेंट के जरिए हम बात करेंगे डीप फेक तकनीक के बारे में, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद लेकर चलेंगे आपको चिराग जल रहे हैं युवा डायरी की तरफ, जहां हम आपको सुनवाएंगे कपिल की रजत जी से बातचीत और इसके बाद में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। तो दोस्तों कार्यक्रम में बहुत कुछ होने वाला है, ढेर सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है और अगर इस सब का मजा लेना है तो कार्यक्रम में अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा। फिलहाल सुनिए ये एंटरटेनमेंट से भरपूर गीत।

0: प्रथमों पर आज हम इस कार्यक्रम में पेश करते हैं।
1: पेश नहीं करते हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चुरुलिया गांव में हुआ। ये गरीब मुस्लिम परिवार से थे। बचपन से ही मुसीबत और मेहनत उनके साथ रही। उन्होंने मस्जिद में आजान देने का काम स्टार्टिंग में किया, लेकिन उनकी रुचि जो थी वो साहित्य और संगीत की तरफ थी। किशोर अवस्था में उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन जल्द ही सेना छोड़ दी और लेखन को चुना और लेखन की दुनिया में इस तरह कूद गए कि उन्हें राष्ट्रीय कवि, बांग्लादेशी कवि का जो एक
0: खिताब
1: था वो भी हासिल हुआ।
0: इनकी पहली जो रचनाएं हैं वो विद्रोह की ज्वाला लेकर आई। 1922 में प्रकाशित इनकी कविता विद्रोही ने उन्हें विद्रोही की कवि खिताब की दिला दिया। कविता आज भी स्वतंत्र और न्याय बगावत का प्रतीक बनी हुई है। जो इनकी कविताएं हैं वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: और विद्रोही की जो कुछ पंक्तियां थी वो स्टार्टिंग में कार्यक्रम में हमने आपको सुनाई भी। नजरुल साहब ने साम्राज्यवाद, कट्टरपंथी और समाज में जितने भी जुल्म हो रहे थे उनके खिलाफ अपनी जो कलम थी उसको तलवार बनाया। उन्होंने धूमकेतु अखबार निकाला जिसकी वजह से उन्हें कैद भी हुई। नजरुल साहब सिर्फ विद्रोही ही नहीं थे, वो मोहब्बत, इबादत और कौमी एकता के भी एक पैगंबर थे, एक दूत थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। एक मुस्लिम कवि होने के बावजूद उन्होंने भगवान कृष्ण पर सुंदर भजन लिखे।
0: और ये सही कहा आपने कि अपनी कलम से उन्होंने तलवार को बनाया, लेकिन साथियों तलवार से भी महत्वपूर्ण होती है अपनी कलम, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं कलम की मदद से।
1: उन्होंने ये जो बदलाव लाए वो भी कलम की ताकत से ही लाए। दुनिया में मोहब्बत फैलाई, इल्म फैलाया, वो भी अपनी कलम के माध्यम से ही फैलाया। उन्होंने हर एक धर्म को अपना माना और किसी भी तरह की रूढ़ी जो भावनाएं थी उनका विरोध करते हुए आगे बढ़ते रहे।
0: जी, और परमिला देवी हिंदू थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन की किसी भी दबाव को ठुकरा दिया। उनका जीवन सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल हमें देता है।
1: जी, जो प्रमिला देवी थी वो उनकी धर्म पत्नी थी और उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द फैलाते हुए उनके साथ अपना जीवन जिया। उन्होंने लगभग 3,000 से 4,000 गीतों की रचनाएं की जिन्हें नजरुल गीति या नजरुल संगीत भी कहा जाता है। ये गीत आज भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बेहद लोकप्रिय हैं।
0: नजरुल साहब ने उपन्यास, नाटक, कहानियां और निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अग्निवीणा, विद्रोही, धूमकेतु, बंधन, हरा आदि।
1: दुख की बात यह है कि बाद में एक दुर्लभ बीमारी ने उन्हें घेर लिया। कई सालों तक वह खामोश रहे। 1972 में बांग्लादेश सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। 29 अगस्त 1970

अफगान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: बस मैं निवास करता हूँ।
1: रजत जी, आप हमारे साथियों को बताइए कि आपने जैसे कि एमए के साथ में ही 2 बार नेट क्लियर किया है, तो वो कैसे किया है?
0: जी कपिल जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं कि एमए के साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करने का अवसर मतलब बहुत ही अच्छा एक विकल्प कि एमए के साथ नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। मैं सभी श्रोताओं के जो कि अभी पीजी कर रहे हैं और या करने वाले हैं, उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप एमए के साथ ही अपने नेट जेआरएफ की तैयारी भी साथ में करें। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके भविष्य के लिए। और मेरी तैयारी में सबसे अहम रोल हमारे गुरुजनों का रहा, जो कि हमारे समाजशास्त्र विभाग के जो राजस्थान विश्वविद्यालय के टीचर हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका मोटिवेशन हमें बहुत काम आया। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं बताऊं कि एमए के साथ ही, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है समाजशास्त्र विभाग की कक्षा है, उसमें जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने उन्हीं से मोटिवेट होके उनके साथ ही इस परीक्षा की तैयारी की और साथ में क्लासेस भी रेगुलरली परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।
1: रजत जी, आप हमारे साथियों को नेट जीआरएफ के बारे में कुछ बताइए कि ये क्या होती है, इसे कौन कंडक्ट करवाता है?
0: जी कपिल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम है वह यूजीसी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। और मतलब यह अभी कुछ सालों से यूजीसी ने इसका जो जिम्मा है वह एनटीए को दे दिया है। एनटीए इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन माध्यम से साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, और हर साल मतलब 2 बार ये कंडक्ट होती है। और इसके द्वारा हम जो यूजीसी नेट का कंडक्ट कराने का पर्पस है वह यह है कि इसके द्वारा हम 3 कैटेगरी में अपने रैंकिंग को देखते हैं। यूजीसी हमें 3 रैंकिंग देती है। इसमें एक जेआरएफ की रैंकिंग होती है, एक होती है नेट की, और एक होती है एडमिटेड टू पीएच।
1: जी
0: ये 3 कैटेगरी अभी यूजीसी ने नेट जेआरएफ के द्वारा शिक्षार्थियों को प्रदान की है।
1: जी आपने और दोनों बार नेट निकाला है, 2 हर 6 महीने में ये होती है, तो आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं इसके लिए। तो
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका।
1: रजत जी, आपने नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे की है, ये हमारे साथियों को बताइए।
0: जी मैं आपको बताना चाहूँ कि नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं,
1: जी
0: और ये दोनों ही एक ही प्रश्न पत्र के माध्यम से आते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है।
1: कंप्यूटर पे होता है मतलब ये?
0: जी सर, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और इसमें प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का अलग अलग होता है
1: पैटर्न होता है अलग
0: पैटर्न
1: अलग?
0: होता है, जिसमें 50 सवाल आपसे जनरल रिसर्च एंड आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछे जाते हैं,
1: जी
0: और 100 सवाल आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें आप एमए की डिग्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं,
1: जी
0: और उसके अनुसार ही फिर 150 क्वेश्चन का जो अपना ये प्रश्न पत्र निर्मित होता है।
1: ये 300 नंबर का होता है ना रजत जी टोटल?
0: या जी ये 300 नंबर का टोटल इसमें नंबर होते हैं, और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती।
1: रजत जी, आप हमारे साथियों को बताइए कि इसमें मेडिटेशन का क्या रोल होता है?
0: जी आपके शिक्षा के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी, मनोचेतना की स्थिति भी आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और ये स्ट्रेस नहीं आए उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से योग प्राणायाम को भी समय दें।
1: जी सही कहा साथ रजत जी आपने कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे भी चल इसे इसी तरीके से चलते हुए डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।
1: रजत जी, इसके बाद आपका नेट क्लियर हो चुका है, तो आप हमारे साथियों को ये भी बताइए कि इसमें अब आगे क्या क्या स्कोप है, जैसे कि आप भी क्या कर सकते हैं आगे?
0: देखिए नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम के द्वारा हमें, मैंने आपको जैसे बताया कि 3 कैटेगरी में आपको रैंकिंग दी जाती है, तो जेआरएफ के द्वारा आप पीएचडी करते हैं तो आपको विश्वविद्यालय अनुदान देता है, स्कॉलरशिप देता है, जो कि अच्छा अमाउंट होता है पढ़ने के हिसाब से, आपको रिसर्च में हेल्प मिलती है।
1: जी
0: और नेट का जो पर्पज़ है वह है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम लगती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और जो 3री कैटेगरी मैंने आपको बताई उसमें आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं नेट के स्कोर के बेस पे, क्योंकि यूजीसी ने अभी नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यह लागू कर दिया है कि नेट का स्कोर ही आपको पीएचडी के अंदर।
1: रजत जी, सेट के बारे में भी हमारे साथियों को बताइए कि ये क्या होता है?
0: सेट जो है वह एक राज्य की एग्ज़ाम है, राज्य लेवल की एग्ज़ाम होती है, और ये मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। लाइक नेट, नेट जो होती है वो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है और पूरे देश के छात्र उसमें सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार सेट जो होती है वह हर राज्य अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य

0: की एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है, जो
1: जी
0: कि
1: कंडक्ट
0: उस,
1: करवाता है।
0: हाँ, और उस राज्य की जो बोर्ड होता है, कमीशन होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कराता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी का ये दायरा होता है।
1: रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को वक्त दिया, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
0: जी कपिल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: तो दोस्तों, अभी आपने चिराग जल रहे हैं युवा डायरी के जरिए रजत जी की बातचीत सुनी, और नेट JRF किस तरह से क्लियर किया जाए, किस तरह से प्रिपेयर

0: क्यों मायने रखता है?
1: दोस्तों, सबसे करीबी साथी जो होंगे और सतन आपका जैसा भी व्यवहार बनेगा, आपकी जैसी भी लाइफ बनेगी, वो उन्हीं से रिलेटेड होगी। उनकी आदतें आप में होंगी, उनकी सोच कहीं ना कहीं आप में होगी, उनकी जो वर्थ होगी, उनका जो पैसा होगा शायद उतना ही आपका हो, उनके जो गोल्स होंगे लगभग आपके भी उसी तरह के होंगे। जो सर्किल हम बनाते हैं, जो दोस्त हम बनाते हैं, वो उसी तरीके के तो होते हैं जिनसे हमारी सोच मैच करती हो। अगर आपके दोस्त रात रात भर पार्टी करते होंगे, टाइम वेस्ट करते होंगे, फिजूल की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते होंगे, तो आप भी पीछे रह जाएंगे। और अगर आपके साथी आगे बढ़ना, मेहनत करना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल पागल होंगे, तो आप भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
0: तो सवाल यह है रफिया जी, कि आप भला कैसे पहचाने कि कौन से फ्रेंड है जो आपके लिए जेन्युइन अच्छे हैं और कौन से फ्रेंड है जो अपने लिए अच्छे नहीं है?
1: तो अब आजकल जेन ज़ीज़ में ये वर्ड बहुत कॉमन है कि कौन हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है और कौन हमारे लिए रेड फ्लैग। तो जो आपके गुड ट्रेंड्स हैं, यानी ग्रीन ट्रेंड्स हैं, उनके लिए पांच साइंस जो हैं वो एक बनेगा। आपकी जैसी भी लाइफ बनेगी वो उन्हीं से रिलेटेड होगी। उनकी आदतें आप में होंगी, उनकी सोच कहीं ना कहीं आप में होगी, उनकी जो वर्थ होगी, उनका जो पैसा होगा शायद उतना ही आपका हो, उनके जो गोल्स होंगे लगभग आपके भी उसी तरह के होंगे। जो सर्किल हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं, वो उसी तरीके के तो होते हैं जिनसे हमारी सोच मैच करती हो। अगर आपके दोस्त रात रात भर पार्टी करते होंगे, टाइम वेस्ट करते होंगे, फिजूल की चीजों में अपना वक्त बर्बाद करते होंगे, तो आप भी पीछे रह जाएंगे। और अगर आपके साथी आगे बढ़ना, मेहनत करना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल पागल होंगे, तो आप भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
0: तो सवाल यह है रफिया जी, कि आप भला कैसे पहचाने कि कौन से फ्रेंड है जो आपके लिए जेन्युइन अच्छे हैं और कौन से फ्रेंड है जो अपने लिए अच्छे नहीं है?
1: तो अब आजकल जेन ज़ीज़ में ये वर्ड बहुत कॉमन है कि कौन हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है और कौन हमारे लिए रेड फ्लैग। तो जो आपके गुड ट्रेंड्स हैं, यानी ग्रीन ट्रेंड्स हैं, उनके लिए पांच साइंस जो हैं वो एक महत्वपूर्ण जो है वो आप देख सकते हैं। उनमें के ये कुछ पांच साइंस हैं वो होंगे जिसमें आप समझ सकते हैं कौन आपके लिए सही

0: ये रेड फ्लैग है. और अगर उनका ग्रोइंग ग्रोइंग माइंडसेट नहीं है, वो ग्रोथ करना खुद ही नहीं जानते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे. और सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम देना, रिस्पेक्ट देना, गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, और हमेशा एक दूसरे की वैल्यूज का सम्मान करना. तो ये जो 5 साइंस हमने बताया है ना, जब भी आप किसी दोस्त को देखें कि भाई ये 5 साइन रखता है, ग्रीन फ्लैग है, भाई तुम मेरे पक्के दोस्त हो. और अगर इसके उल्टे ये जो रेड फ्लैग्स के साइन है, जैसे कि नेगेटिविटी स्प्रेड करना, आपको डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, आपको परेशान करना, कॉन्स्टेंटली आपकी जो कंपेरिजन है वो किसी ना किसी से करते रहना, या आपको गलत दिखाना, नीचा दिखाना, ये सब आदतें होती हैं रेड फ्लैग्स की. अब ये जो दोस्त होते हैं वो आपको नशे की तरफ ले जाएंगे, किसी न किसी तरह की पार्टीज की तरफ ले जाएंगे, एडिक्शन की तरफ ले जाएंगे, और आपका ध्यान ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज्ड करेंगे, कि जो अच्छी चीजें हैं, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने वाली हैं, वो कहीं पीछे छूट जाएंगी, और कामयाबी भी उसी के साथ पीछे जाती रहेगी.
1: जो दोस्ती होती है साथियों, जो दोस्ती होती है वो चाहे खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन खून के रिश्ते से भी बढ़कर कभी कभी होती है.
0: देखिए, हमारे दोस्त जो होते हैं ना कपिल, वो हम खुद चुनते हैं.
1: सही है.
0: बाकी सारे रिश्ते तो परमात्मा ने हमारे लिए पहले से बनाए हुए हैं, और जो दोस्ती का रिश्ता है वो हम खुद चुनते हैं. हमारे ऊपर परमात्मा ने जो है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई अपने दोस्त को तुम खुद चुन सकते हो.
1: जी बिल्कुल. अब वो अच्छा हो या फिर बुरा, ये हमें सोचना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए.
0: बिल्कुल. जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, गलत को गलत कहना जानते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानते हैं, आपको कहीं पूरी चीज में पढ़ने देने से बचाते हैं, वो आपके दोस्त हैं. जो आपको नशे के तरफ, एडिक्शन के तरफ, बुरी आदतों के तरफ ले जाते हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं.
1: हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉलेजों में या फिर स्कूल या फिर बड़ी बड़ी संस्थाओं में किस तरीके से ड्रग्स एडिक्शन चल रहा है, देखने को मिलता है हमें. तो ये सब भी हमें इनसे दूर रहना है, और एक युवा होने के नाते, एक युवा साथी के साथ ही हमें अच्छे फ्रेंड बन के रहना है.
0: और अगर आपका सर्कल ग्रीन फ्लैग वाला है तो बिल्कुल टेंशन आप खत्म कर दीजिए, खुश हो जाइए. ग्रोथ आपको कभी नहीं रुकने देगी, ऊपर वाला आपको शुक्रिया अदा करता रहेगा, और आप भी ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि भाई हमारा सब काम है वो अच्छे से चल रहा है. और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोस्तों, आपकी जो नेटवर्क है ना, नेटवर्थ है, वो आपका नेटवर्क ही है. सही इंसान को चुने, सही माहौल बनाए, और अपने सपनों को पंख देते रहें, ये बेहद जरूरी है दोस्तों. और आपको आगे ले जाने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए इस वक्त पे, इस दौर में, ये जो चुनाव है ना हमारा, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये चुनाव अगर आपके दोस्त का हो, जीवन साथी का हो, या जीवन में किसी भी तरह के रिश्ते का, आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से चुनाव करना है.
1: अगर हमने सही समय पर सही व्यक्ति को चुन लिया है, एक अच्छा दोस्त को चुन लिया है, तो हमारी लाइफ जो रहती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, या फिर यूं कहे कि बहुत ही कुछ सीखने को हमें मिलता है. लेकिन वही चीज अगर अपन ने गलत डिसीजन ले लिया, तो इसके गलत इफेक्ट भी हमें झेलने पड़ सकते हैं.
0: देखिए दोस्तों, कई बार जब ये जो बुरे लोग होते हैं, या हमारा जाने अनजाने में बुरा चाहते हैं, वो हमें ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं जहाँ हम कभी जाना नहीं चाहते थे. हमें उन्हें मजा आ रहा होता है, उन्हें भी मजा आ रहा होता है, हमें भी मजा आ रहा होता है,
1: और वो हमें प्रोत्साहित करते हैं उस चीज के लिए.
0: जी, और हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो इस तरह का है कि कभी भी आप जो बुरी चीज़ होती है उसके लिए ज़्यादा खुश होते हैं उसको करके. तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पहचान आपकी है, पहचानना आपकी जिम्मेदारी है. अपने नेटवर्क को इतना इम्पॉर्टेंट और इतना महत्व देना है कि वो आपकी नेटवर्थ को तय करने योग्य हो.
1: और आज के जो वर्तमान समय में देखें तो युवा ही भविष्य है, तो हम युवा ही सोच समझ के कार्य करना चाहिए. हमें नैतिक तरीके से कि किस तरीके से नैतिकता हमें होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. और हो सके तो हमारे दोस्तों को भी हमें इसके बारे में बताना चाहिए, और हमें खुद ही ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो नैतिक हों और नैतिकता के रास्ते पर चलते हों.
0: तो दोस्तों, कौन ग्रीन फ्लैग है, कौन रेड फ्लैग है, जेंजीज की जबान में हमने आपको समझा दिया है. और आशा करते हैं कि युवाणी कार्यक्रम में जो हम युवा बैठे हैं, आप युवाओं तक इस बात को अच्छे से पहुंचा सके हो, आपको ये बात समझ आई हो, और अपनी लाइफ में आप सोच समझ कर और अच्छे इंसानों का चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और सुनते रहेंगे युवाणी, और चलेंगे हमारे साथ इस गीत की तरफ.

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे युवाणी के बेतहाशा खास सेगमेंट ज्ञान विज्ञान की तरफ, जहाँ पर जितने भी विज्ञान में इंटरेस्टेड और जितने भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और नई अपडेटेड जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जो युवा एक्साइटेड रहते हैं, वो सभी तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो आजकल हर किसी के मुँह पर है और हमारे फ्यूचर को खतरे में भी डाल सकता है। विषय है डीप फेक, वो टेक्नोलॉजी जो किसी भी इंसान की आवाज़, चेहरे, वीडियो को इतना सच्चा बना देती है कि वो हमें असली लगने लगे, जबकि होती नकली है। और असली नकली में फ़र्क करना हम आम इंसानों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है।
8: चलिए आज इसी के बारे में ज्ञान विज्ञान सेगमेंट के जरिए डिटेल से समझते हैं इस चीज़ को कि

0: जो फेल्ड्स होते हैं वो अंजाम देते हैं। साथ ही प्रोग्राम्स बिना सहमति के महिलाओं के फेक वीडियोस बनाना इसका सबसे बड़ा खतरा है।
1: तो दोस्तों, इन फ्रॉड से और ये जो फ्रॉड पोर्नोग्राफी है, इससे आपको बचना है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी बिना सहमति के उनकी वीडियोस बना दी जाती हैं और वो स्प्रेड कर दी जाती हैं, और
0: जी
1: ये उनकी गरिमा के लिए, उनकी इज्जत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे में उनको एनालाइज करना कि ये सच है कि झूठ, ये हमारी जिम्मेदारी है। नेशनल सिक्योरिटी, देश के खिलाफ जो प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, जो अलग अलग तरह की रूमर्स और जो न्यूजेस क्रिएट करी जाती हैं जो कि झूठी हैं, वो भी इसी के थ्रू की जाती हैं। दोस्तों, 2024 से 25 के बीच में जो डीप फेक के मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में जो सरकारें हैं इसके खिलाफ कानून बना रही हैं। भारत में भी आईटी रूल्स 2021 के तहत ये जो प्लेटफॉर्म है ये जिम्मेदारी लेता है कि डीप फेक को किस तरह से कम किया जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको थोड़ा और बताएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीप फेक के बारे में। अब ये जो डीप फेक है वो कैसे है, क्या है, ये तो आप समझ गए। तो आपको कुछ ज्ञान विज्ञान टिप्स के बारे में बता देते हैं जिनसे कि आप डीप फेक को पहचान सकते हैं।
2: साथियों, डीप फेक यानी कि AI जितनी हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुई है, उतने ही इसके प्रभाव भी है, यानी कि उतने ही इसके नुकसान भी है। तो इसे हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए।
1: आप कोई भी वीडियो देखें जिसमें चेहरे पर असमान रोशनी हो, ब्लर दिखाई दे या कुछ भी आपको गड़बड़ लगे, तो पहचान जाए डीप फेक है। आँखों की जो पलकें हैं वो झपक रही हो और असमान तरीके से झपक रही हो, तो पहचान जाए डीप फेक है। हाथों की हरकत असमान लगे तो पहचान जाए डीप फेक है। और अगर कोई बैकग्राउंड है उसमें कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है तो समझ जाए डीप फेक है। अब बोल रहे हैं, बहुत जोर जोर से बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको जहां भी नजर आए बोल दें डीप फेक है। जब भी कुछ देखें जो फेक लगे, हमेशा ओरिजिनल जो सोर्सेज हैं उनकी जो वेबसाइट है उनको चेक करें, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनको चेक करें, तभी आप जो डीप फेक है उसके बारे में जान पाएंगे, उसे रिपोर्ट कर पाएंगे। और अगर आप देखते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी जो चीज़ें हैं वो सर्कुलेट की जा रही हैं, तो तुरंत जो हमारे साइबर क्राइम पोर्टल है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है, फैक्ट चेक करें।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी चीज पर एकदम से हमें रिएक्शन नहीं लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उसके बारे में कि वो क्या है, किस तरीके से है, रियल है या फिर AI से जनरेट करके बनाई गई है, और सोच समझकर उसके बाद हमें कुछ आगे कदम उठाना चाहिए।
1: फैक्ट चेक करना और उस वेबसाइट पर जाकर चेक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा हो जरूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो। और हाँ, किसी भी तरह का कंटेंट हो ब्लाइंडली उसे शेयर नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपके तरफ आती है तो आपको देखना है, सोचना है, समझना है, और किसी भी तरह से किसी की गरिमा को आपको लगता है कि उसके थ्रू आहत हो सकती है तो प्लीज थोड़ा सा पॉज लीजिए शेयर करने से पहले, सोचिए समझिए उसके बाद आगे बढ़िए। साथियों, टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, इसका जो हमें फैसला करना है वो उसके

इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि कौन इंसान उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर रहा है। डीप फेक हमें सतर्क रहने की याद दिलाता है। तो देखिए, सुनिए, सोचिए, समझिए और फिर शेयर कीजिए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी, और साथ साथ सतर्क रहिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करानी है।
1: बार बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों और उन्हें नौकरी देने वाले नियुक्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित देती है। लक्ष्य है इसका 3.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना। इसका बजट 99.406 करोड़ का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है
0: और इसकी जो समय सीमा है जो लोग 1 अगस्त 2025 से 1 जुलाई 2027 के बीच इसमें जुड़ेंगे उनको उनके ऊपर ये योजना लागू होती है। और इसके लाभों के बारे में बता दें, निजी क्षेत्र में जितनी भी नौकरी पाने वाले पहली नौकरी पाने वाले युवा हैं उनको जिनकी नौकरी 1 लाख से कम की है उन्हें 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और ये जो राशि है पहले आएगी 6 महीने बाद और फिर आएगी 12 महीने बाद। और इसमें जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं PMVBRY की जो पोर्टल है उस पर जाकर और माय स्कीम प्लेटफॉर्म पर जाकर इसमें आवेदन करिए, अपनी जो रोजगार है उसके साथ में जो कई फायदे हैं भत्ते हैं उन्हें भी पाइए। तो दोस्तों ये जो घड़ी की सुइयां हैं हमारे तरफ थोड़ा इशारा करने लगी हैं कि जो हमारा वक्त है वो यहीं ख़त्म हो चला है। लेकिन दोस्तों युवाणी कार्यक्रम समाप्त होता है लेकिन एक जो तरोताज़ा वाइब है ना वो आपके लिए छोड़ जाता है। अचानक से ये जो बहुत तेज गर्मी है, अचानक तो नहीं मौसम ही गर्मी का है,
1: मौसम ही गर्मी का चल रहा है अभी।
0: जी तो ये जो मौसम है ये हमें सिखाता है कि हमें इस गर्मी में इस मशक्कत भरे मौसम में भी किस तरह से अपने धैर्य को बनाए रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारा हो रहा है टेस्ट की किस तरह से हम सब्र से काम लेने वाले हैं क्योंकि ये जो गर्मी है अच्छे अच्छों का दिमाग हिला दे भाई।
1: और इस बार तो सुपर अनलीनो है यानी कि गर्मी वैसे ही तेज होने वाली है।
0: तो दोस्तों ये जो धैर्य है अपना बनाए रखें क्योंकि हालांकि मौसम जो है वो आपके लिए मुश्किलों को पैदा करने वाला है लेकिन इन मुश्किलों से डरना युवाओं का काम नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, धैर्य से काम लेंगे और हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। तो देखिए ना युवाओं ने तो इस गर्मी में भी एक पॉजिटिव चीज़ धैर्य ढूंढ ली है। तो दोस्तों आपको हाइड्रेटेड रहना है, धैर्य से काम लेना है। हाँ अब गर्मी है, पॉजिटिविटी ढूंढ ली है लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई घूम रहे हैं बाहर, ऐसा कुछ नहीं
1: करना है।
0: लू से बचना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लू से बचने के लिए क्या करेंगे आप बताइए?
1: हमें टाइम टाइम से पानी पीते रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे बाहर निकले अपने साथ पानी की व्यवस्था रखें, पानी सबसे ज़्यादा पिएं और हो सके तो जूस भी पी लें।
0: बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की कमी नहीं होगी, अपना काम करते रहेंगे, फिट रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और धैर्य भी बना रहेगा। तो दोस्तों आपको फिट रहना है, मजबूत रहना है गर्मी में, इस गर्मी से फाइट करते रहनी है और अपने काम को पूरे सब्र से पूरे इत्मीनान से पूरा करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। और लू से बचने के लिए हमारे पास में जो हमारा देसी जुगाड़ है गमछा उसका पूरा यूज़ करना है।
1: जी, जी,
0: ये जो आपकी सनस्क्रीन का जो काम है वो ये जो सस्ता सा गमछा है वो आसानी से कर देगा, आपको बचाएगा इस गर्मी से भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेटेड रहना, अपने आसपास के जो

तो दोस्तों, अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना। अब आपको लिए चलते हैं आज के जानकारी के विषय की तरफ, जो है PMVBRY यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, युवाओं को उनकी पहली नौकरी व वित्तीय सहायता

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको दें हमारे केंद्र से आज के शेष रहे और कल आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

हमारी आज की सभा में सुनिए, अब से कुछ देर बाद यानी शाम 6:05 पर फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:15 पर भी। आज शाम 7:00 समय है किसान साथियों के कार्यक्रम किसान वाणी का। आज होगा किसान वाणी सजीव फोन इन, जिसका विषय होगा जैविक किचन गार्डनिंग। और रात 9:00 हर रोज की तरह आपको सुनवाएंगे गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस।

ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब चलते हैं कल के कार्यक्रमों की ओर। कल सुबह 7 बजे सुनिए हमारा दैनिक सूचनात्मक स्थानीय कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। फिल्म संगीत सुनिए सुबह 7:30 पर, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर।

0: कल सुबह 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम मिशन लाइफ, जिसका विषय रहेगा मिशन लाइफ और युवा दायित्व। इसमें आप सुनेंगे महिमा वैष्णव, पर्यावरण प्रेमी से ललित वैष्णव की बातचीत। सुबह 8:30 पर सुनिए महिला जगत, जिसमें होगी चर्चा कुंड, तालाब, बावड़ियां, हमारी विरासत, हमारी जिम्मेदारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे शिशु के लिए अमृत, स्तनपान और जानकारी की बातों में मिलेगी आपको जानकारी जल जीवन मिशन 2.0 की। दोपहर 12:00 सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1293 भाग। शाम 5:00 सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा कंदुकुरी वीरेशलिंगम पुंतलू की पुण्यतिथि पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर। हम और हमारा पर्यावरण में आपको बताएंगे बारिश का बदलता पैटर्न, चिराग जल रहे हैं में आपकी बात करवाएंगे हमारे एक युवा साथी से और जानकारी में मिलेगी आपको जानकारी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना की। साथ ही होंगे और अन्य आकर्षण, आज का इतिहास, रोजगार सूचना और कल के कार्यक्रम। शाम 7:00 सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल, जिसकी चर्चा होगी किसान पशु आवास योजना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर। भेंट वार्ता होगी नए फलदार बगीचे लगाने से पहले खेत की तैयारी और जानकारी की बातों में होगी जानकारी पशुओं का समय पर टीकाकरण। रात 9:00 हर रोज की तरह सुनिए कार्यक्रम सबरस। तो ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष रहे और कल आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आपसे कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीर जारा फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया उदित नारायण ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत मदन मोहन का।

0: Akashvani at 90.
1: सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रिफ्यूजी से।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी उसके बाद राजस्थानी में। साथ ही आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
2: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
1: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट

0: विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृहमंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति

मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू

0: अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई, साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने घड़साना थाने के एसआई रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और ANM भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समेजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। BSF के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानू मिलर काम करण माथे जोर तीनों। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डाओं आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू फैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश के हलका माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगति पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारों सागर।

हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।

0: मतदान बारा माई जाग जगा वन जरूरी बतायो। श्री शाह कहो कि साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलान और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ो रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहले गृहमंत्री सरहद माथे तैनात जवाना रो उमाव बताता थका देश री हिफाजत माए वारा योगदान री सराहना कीनी। ई मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलावां सारू नूवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृहमंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकारा बातचीत कीनी।

0: वासी ही श्यामाए राज्यरा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओळखाण दिरावण वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावण वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी चियो हो। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषया माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषया री परीक्षावां ने 4 ग्रुप माए बांटी ची है। प्रदेश माए किसाना ने नकली और अमानक बीजाऊ बचावण सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर माए आज खास अभियान चलायो। इन दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारां सागे मेलर कथित नकली बीज बनावण रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी माए छापामारी रे दौरान कंपनी माए घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो के सरकार आवता बुआई सत्र सारू किसाना ने बेहतर गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया करावनो ते कीनो है। तंबाकू रा गलत नतीजा रा बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद हूँ जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगा ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनु जुड़ी राय और जरूरी सेवावां मुहैया कराई जावेला। 31 मई ने मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा माए खास कार्यक्रम रख्या जावेला। इन बीच महिलावां और टाबरियां माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इन दौरान अस्पतालां माए महिलावां रा शरीर माए खून री जांच सागे इन री कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दी री ची। अरब मौसम प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोड़ा लू बाजणो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगनी जिला माए आज ही पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर माए 47 जबकि फलौदी और बीकानेर माए 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा माए रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। चूरू माए पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगा ने घनी परेशानी रो सामो करनु पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर माए लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। इन बीच भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ये पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहो के अहलकारा ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूं कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवण सागे उन्नो बायरो बाजन रा आसार जताया है। इन बीच 28 मई प्रदेश माए कठे कठे आंधी बारिश वेवण री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरां रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माय करी चावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीकाऊ अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माई बतायो हो कि इन योजना रा तहत रेल और हवाई जहाज रे जरिए 56,000 बुजुर्गान मुफ्त तीर्थ कराए।

0: कचा वेला आमायों 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा ई सीजन रो पहलो क्वालिफायर मुकाबलो आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स बीच खेलो जावेला। अब थोड़ी देर पछे धर्मशाला माए फेवन वाला ई मुकाबला माए जीतन वाली टीम सीधी आईपीएल 2026 रा फाइनल माए पूग जावेला, जदके हारबा वाली टीम ने एक और मौको मिलेला। होड़रातेत काल मोहाली माए खेलिया जावन वाला एलिमिनेटर मुकाबला माए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमी सामी भैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू BSF फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डाऊ आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है जावेला। RPSC वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश रा कई हलका माए लू रो कोप श्रीगंगानगर माए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करीचियो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल का कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोता कार्यक्रम किसानवाणी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम सुन बड़ा से भी कृष्ण भाई बने कहते हैं आपका साथी बालमुकुंद सुमन
7: और शीतल व्यास को
6: घनो घनो राम राम। तो भाई देखो शीतल जी, आपने जो अबाण गर्मी को टर्म विचार और गर्मी तो आपने कृष्ण सत्य के जो अबाण पड़ रही है, आपना खुद को भी स्वास्थ्य को ध्यान रखा ना, साथ में आपने जो जानवर चे अटकेडिसू ये

0: गर्मी के ताई देखता हूँ यार, और अपनी विशेष तौर से छोटा मोटा अपना टाबर टीपर से बालक से या सभी को ध्यान रखनी चाहिए जी।
1: बिल्कुल ध्यान
0: हाँ
1: रखानी चाहिए गर्मी में।
0: हाँ और फिर एक अपना पेड़ पौधा जो जो बाण, क्योंकि गर्मी में घना जो किसान साथी जवान पेड़ पौधा भी लगा रखे थे, तो पेड़ पौधाओं को भी पूरा पूरा ध्यान रखना।
1: बिल्कुल धूप
0: हाँ
1: में जल जाओ जो।
0: हाँ हाँ तो इन वजह से अपनी सभी को ध्यान रखना था या और चना जी काम करनी चाहो। और फिर कह चना के आपन देखो, आपने भी देखा होगा कि आपने खेती बाड़ी तो करी रहे हैं जो आपने पास ना जी बड़ा बड़ा खेत, लेकिन फिर भी एक खर्च एक खाओ च आपने हड़ौती में क गागर मसागर बरबाड़ी, क्योंकि
1: हाँ
0: बड़ी चीज मंद उनका तय छोटा में कई प्रकार से समेट आपने, और आपने जन जे छोटी जो जगह छ उमा भी आपने जन जे एक अच्छो आपने जन जे गार्डन लगा के ये लगा के और तैयार कर सका चा।
1: बिल्कुल, मतलब
0: हाँ
1: आप जो बात कर रहे हो जैविक किचन गार्डन की बात कर रहे
0: हाँ
1: हो।
0: बिल्कुल आप समझ गया। और आपने जो श्रोता जे जो आज कार्यक्रम सुन रहा छे और यहाँ के ताई आपनों जो आज को जो विषय छे वो याद कोई ना, तो आपनों विषय आज यू जगह जैविक किचन गार्डन है ना, यहाँ के ताई कसे तैयार करा काई काई करा और यहाँ के ताई लगाबा में काई काई समस्या रह छे, या यहाँ के ताई आपने जन जे काई काई फायदा रह छे, तो घनी सारी ऐसी बात छे। तो यहाँ के ताई लेकर और आज आपने जो स्टूडियो छे इमें उपस्थित जो मेहमान छे और अपना फोन नंबर छे वो भी एक बार जो करसान भाई छे आज ये कार्यक्रम से जुड़वा चाह रहे, तो अपना फोन नंबर छे 07-432-232-593 पर फोन करके, और जो भी है कि आज की ये जो जैविक किचन गार्डन से संबंधित कोई भी यहाँ का मन में सवाल हो तो प्रश्न कर सके छे। और आज आपने जो मेहमान छे वहाँ को ये परिचय
1: आज
0: भी
1: जो अपना साथ मेहमान छे ना वो छे श्रीमती यमुताई जी बंसोड़, जो आपका ताई किचन गार्डन जो आपने घर में छोटा मोटा रसोई मतलब जो भी सब्जियां का छिलका कचरो खड़ा छे ना उसे कैसे अपन गार्डन सजा सका छा उसके बारे में बताओगा, तो जिको भी प्रश्न हो फोन घुमा सको जो।
0: हाँ हाँ यह तो बहुत अच्छी बताई। और यमुताई जी बंसोड़ कार्यक्रम आपको घणो घणो स्वागत है साहब, राम राम साहब।
2: जी राम राम।
0: और अब जैसे आप एक पहलू ही जो आपको सवाल जाए आज को जो विषय के तय लेकर जैविक जो किचन गार्डन की जो बात कर रहे हैं अपन, तो एक किचन गार्डन में एक कई चीज हो जाए कर सकते बताओ आप।
2: जी जैसे अपन बाजार जैसे बाजार जाते हैं ना, तो वहाँ से अपन सब्जियाँ लाते हैं,
0: जी
2: लेकिन अपन को पता नहीं उनकी गुणवत्ता कैसी है, वो कैसे है, या तो रासायन खाद डाला हुआ रहता है या फिर बहुत कीटकनाशक डाला हुआ रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो इससे निकलने के लिए यदि अपने घर में ही थोड़े बहुत अपन सब्जियाँ लगाते हैं और उसी को किचन गार्डन बोलते हैं, या घर की गृह वाटिका भी बोल सकते हैं या छोटा सा बगीचा भी बोल सकते हैं, और उसमें ही सारे प्रकार के पौधे आप लगा सकते हैं।
0: और फिर आप तो जानो जो देखोगा बाण जो देखो हमारी जगह अपना खान पान के तय लेकर,
2: जी
0: और कजन बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, तो ये खान पान की और आपने शुद्ध जो साग सब्जी अपन के तय न मिल रही, और ये आपने बहुत अच्छो ये बताई कि भाई इनके माध्यम से आपने एक अपनी शुद्धता मिलेगी और अच्छो आपने खान पान रहेगा। तो इनक या जो किचन जो गार्डन छे इनके ताई मतलब मान लो कोई तैयार कर बुझाओ तो इनके लिए कहीं कितनी जगह कितनी चाहोगी या इनमें कहीं करनी पड़ेगी यहाँ ताई शुरुआत कर ले।
2: इसके लिए वैसे ज़्यादा जगह तो नहीं चाहिए, जैसे गमले या ग्रो बैग ले सकते हैं,
0: जी
2: और आपके घर के आगे यदि खुली जगह हो तो खुली जगह में भी कर सकते हैं। गमले में छत पे आराम से कर सकते हैं,
0: जी
2: तो गमले में पहले मिट्टी का वजन न ज़्यादा ना हो, इसलिए थोड़े ये जो पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ते हैं आधा गमला वो भर दीजिए, और उसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा गोबर खाद डाल के उसमें कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। अब कुछ सब्जियों के बीज होते हैं, किसी के पौध तैयार करना पड़ता है, तो जैसे पौधे तैयार करने के लिए पहले बीज डालो, फिर जैसे बीज उगते हैं उसके पौधे तैयार होते हैं, फिर उसमें से निकाल के सिंगल सिंगल उसको अपन लगा सकते हैं। तो जैसे घर में अनुपयोगी चीज़ें होती है, जैसे पेंट की बाल्टियाँ होती है और तेल की 5 लीटर या 10 लीटर की कैन होती है खाली प्लास्टिक वाली, या प्लास्टिक के डिब्बे, उनमें भी अपन ये उगा सकते हैं।
0: एक श्रोता जो अपना जो फोन कॉल से जुड़े हुए जे हेलो।
3: हेलो
0: हाँ राम गोपाल जी बोलो।
3: राम गोपाल
0: हाँ
3: कैसे
0: हाँ
3: हो?
0: बोलो साहब बोलो बोलो।

0: કઈ છે કે
1: હા
0: આજ કો જો આપણે વિષય છે હેલો
1: હેલો
0: વિષય છે આજ કો આપણે જૈવિક જો કિચન ગાર્ડન છે એક તાઈ લેકે વિષય છે તો આજ આપ કઈ સવાલ પૂછવા ચાહો છો કિચન જેવી ગાર્ડન મતલબ છોટી સી જગ્યામાં ભી આપણે છે ને જે મતલબ ઘર ને કઈ પ્રકાર સો આપણે ગાર્ડન લગાવવા યા આપણે હું કે તાઈ છે ને જે શાક સબ્જી લગા કે ઓર છોટી જગ્યામાં ભી આપણે કર સકતા યાર
1: જેસે કે એક છત આંગન આંગન આંગન આંગન
0: બોલ અચ્છા અચ્છા હા
1: મેર કે ઉપર જેસે કે ફૂલ પત્તે લગા દેતે અપન
0: હમ હમ
1: કે ગેંદા હે ઓર એસે ફલ ફલ સબ્જી જેસે ખીરા ભી લગા સકતે હે કે
0: અચ્છા અચ્છા
1: ખીરા ખીરા
0: યા કો ખબા કોઈ છે કે ભાઈ ખીરા વગેરે ભી લગા સકે છે કે આપણી કિચન ગાર્ડન
2: जी जी लगा सकते हो आप खीरा लगा सकते हो लौकी लगा सकते हो तोरई लगा सकते हैं इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है आप दीवार के सहारे लगाओ
1: मशरूम
2: मशरूम की खेती ऐसे खुले में नहीं होती
1: मशरूम तो अलग ही
2: हाँ वो उसका प्रकार अलग होता है उसको अंधेरे में लगाया जाता है
0: ठीक है राम गोपाल जी आपने जो फोन कॉल्स करी हो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके ताई और जैसे कि आपने बात चल रही थी एक वो किचन गार्डन वाले है ना तो इनके लिए फिर और सामग्री के ताई लेकर और कहीं कहीं सामग्री की आवश्यकता पड़े जा अपने ताई
2: इसके लिए सामग्री तो
0: भाई जैसे आप बता रहे थे भाई बाल्टी वगैरह कोई पुरानी बाल्टी मरिया में भी लगा सक गमला चाहिए हमें भी लगा सका जा और एक अभी जो आपने चाह रहे हो जो टाइम गर्मी को है ना अभी वर्तमान जो समय की बात करें थोड़ी सी तो बाण इम लगा सका जा बाण भी है कहीं कहीं बाण
2: इसमें भी लगा सकते है अभी
0: हाँ हाँ
2: ज्यादा ज्यादा जगह हो तो आप भिंडी लगा सकते हो ग्वार फली लगा सकते है घर पे
0: जी जी
2: और करेला भी लगा सकते है
3: तो यमुताई जी आपने जो आपको किचन गार्डन छ तो उमा कशा कशा पौधा सब्जियां लगा रखी छ
2: अच्छा अभी मेरे पास तो बहुत सारे प्रकार के लगा रखे हैं वैसे फलों में तो मेरे पास नींबू है और अमरूद है और लसोड़ा है पपीता है अनार है मोरिंगा है चीकू है लोकाट है कटहल है आम है केला है एप्पल बेर भी है और बिलपत्र है फालसा है और सीताफल है ये सब फलों के पौधे हैं और अभी भी लगे हुए हैं और जैसे सब्जियों में भी बैंगन भिंडी लगा रखी है बैंगन लगा रखे है मिर्ची लगा रखी है टमाटर और शक्करकंद की बेल भी चल रही है और ये एक एयर पोटैटो आता है जो बाकी पोटैटो तो अंदर नीचे जमीन में आता है लेकिन ये इसका नीचे कंद लगा के ये ऊपर इसका बेल चढ़ता है अभी बारिश में लगाया जाएगा इसको और ऊपर बेल में इसमें कंद आते हैं उसको एयर पोटैटो कहते हैं और पोछा की सब्जी लगा रखी है
0: जी।
2: चौलाई लगा रखी है और लौंग वाली बीन्स आती है बीन्स फली वो लगा रखी है बालोर लगा रखा है कुल्फा लगा रखा है धनिया लगा रखा है पालक एक अंबाड़ी होती है जिसे वो गोंगारो भी बोलते हैं वो अभी बारिश में लगाया जाएगा और एक अरहर लगा रखी है ये तो सब्जियों में हो गया
0: जी।
2: अब बात आती है औषधीय पौधे तो उसमें भी है कुछ तुलसी है हाड़जोड़ है नागरबेल है लहसुन लिली है जिसकी खुशबू उसके पत्ते की लहसुन की जैसे आती है जैसे लेमन ग्रास है आमी हल्दी है काली हल्दी है और कुछ फूलों में भी है जैसे मोगरा है चांदनी है रात रानी है पारिजातक है सदाबहार है गुलदाउदी है हजारा है गुड़हल है और ऐसे कई वेराइटी है मेरे पास फूलों के भी है
0: एक श्रोता जी आपने जो फोन कॉल से जुड़ रहे थे हेलो हेलो हाँ राम राम साहब
4: राम राम साहब
0: नाम बताओ आपको
4: ग्यारसी राम लोधा बोल रहे हो हजगढ़ जिला मध्य प्रदेश से
0: हाँ जी ग्यारसी राम जी आज अपना जो किचन जो गार्डन है मतलब छोटी जगह में अपन की प्रकार से कोई ये कर सका जा ये खेती बाड़ी तो कहीं सवाल पूछ चाहो जो आप
4: खेती बाड़ी को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि जो कोई बीज सोयाबीन का कौन सा लगाए
0: अरे सोयाबीन वालों विषय नहीं है आज आपने जो विशेषज्ञ जो वो कोई ना आज तो कहीं जगह अपना जो यो विषय अलग चाहिए सोयाबीन वालों जो आप जो दूसरी बार आप जब भी कोई कार्यक्रम हो जब यही विषय के तय आप ले सको छो और जैसे कि आपने पहले भी बातचीत चाह रही थी जो किचन गार्डन में आपने ये सब प्रकार का पौधा लगा रखे जो तमाम सारा लगा रखे

0: हैं, तो ये आपने ये कब से शुरुआत करी है कि और कैसे आपको मन में कैसे आए कि भाई मैं ये लगानी चाहूँ, कभी कभी विचार तो आएगा आपके?
1: पहले शुरू में तो जैसे सजावटी पौधे हैं
0: जी
1: वो लगाए और वो छत पे गमले में ही लगाए थे। फिर थोड़ा ऐसे लगा कि एक आध बेल भी लगा के देख सकते हैं, हो सकता है घर की सब्जियां मिल जाए, तो उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा अनुभव हुआ। तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे छत से उतर के नीचे घर के आंगन में शुरुआत की। तो अभी हो गए मुझे 4-5 साल में ये अभी बताया, इतनी सारी वैरायटी घर में लगा चुके हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: और केला में फल भी आ रहा है, नींबू में फल आ रहा है, तो इस तरह से।
2: जो आपने जो पौधा लगाया तो आपन बात कर रहे हैं जैविक वाली, तो वहाँ पौधा की देखभाल आप जैविक जो ऑर्गेनिक तरीका से कैसा कर रहे वहाँ पौधा की देखभाल?
1: ऑर्गेनिक मतलब शीतल जी जैसे खाद बनाना बाहर की हो जाएगी, इसलिए घर के इस खाद में थोड़ा उत्पन्न कम आता है, लेकिन अपने आंखों के सामने और शुद्ध होता है जो अपने लिए फायदेमंद ही है।
0: अच्छा, तो इमा आप बीच में जैसे आपने जो गाय को गोबर चाहिए ऐसे गोबर वगैरह वो
1: हाँ
0: भी
1: वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते।
0: मान लो आपने जो कचरो तो डाल ही रहे थे, पर
1: सूखे पत्ते, अभी जैसे पतझड़ हुई है तो उसके सूखे पत्ते भी डाल दो, तो उसका सूखा अच्छा वो गीला खाद नहीं बनता या ज्यादा वो कीड़े वगैरह भी नहीं होते उसमें, सूखा जल्दी खाद बन जाता है।
2: भाई जैसे आपने बताई चाय पत्ती डाल बाकी, तो चाय पत्ती आपने चाय छानी डायरेक्ट डाल दा या पानी वाणी में निकाल कर डाला?
1: हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं डालनी, उसके दो पानी से धो ले क्योंकि उसमें मिठास होता है ना, वो डालते ही उसमें वो चीटियां वगैरह ज्यादा लगने की संभावना होती है, इसलिए उसको पानी से एक दो बार धो ले और उसके बाद डाल दे।
0: अच्छा अच्छा।
2: और जो सब्जियां का आपने छिलका बताया, तो की तरह का छिलका अपन उम्र डाल सका चा? क्योंकि सब्जियां तो नरी तरीके रहे, सड़ी हुई भी रहे छिलका,
1: हाँ
2: खराब सब्जियां भी रहे,
1: सब सब मात्र जो अपना भोजन बनता है ना, जैसे रोटी या चावल, ये बना हुआ भोजन नहीं डालना है, बाकी सब सड़े हुए गले हुए सब डाल सकते हैं अपन उसमें। जैसे केले के छिलके या केला खराब हुआ है तो उसको रात भर पानी में गला के उसको रख दो और अगले दिन मसल के उसको छान के जिसमें फल आता है या जिसमें फूल आते हैं आप उसमें डाले, तो 8 दिन में उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा।
0: एक श्रोता जो आपने जो फोन कॉल से जुड़े हैं, हेलो
3: हेलो नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, नमस्कार साहब, नाम बताओ आपको।
3: देवर परमानंद बोल रहे हो?
0: परमानंद जी बोल रहे हैं ना। तो परमानंद जी, आज को अपना जो विषय है वो एक किचन जो गार्डन वाला विषय है, और मतलब आपने छोटी आपने घर घर चे तो घर में भी कई प्रकार से अपने गार्डन तैयार करके और साग सब्जी भी कर सका जाएंगे या उम कहीं ऐसा कोई एक आपके तई जो आज विषय है तो कहीं प्रश्न पूछ बचे आज आप?
3: फिर वो मिट्टी का असर आवा सर,

0: ग्रेविंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि एक आपने एक बात चाह रही थी, है ना, तो ये जो आपने पौधा शुरुआत करके और बढ़ाया, तो अभी तक आप ही कितनी सफलता मानो जो आप हम के भाई जो साग सब्जी जो आयु घर पर परिवार के लिए चाल जाओ छे, और अभी तक बाहर जावे की आवश्यकता नहीं पड़ी 5 साल में जो आपने बताई, तो भाई 4-5 साल से लाग रहे थे।
1: हाँ भाई साहब, वो बाहर तो नहीं गए लेकिन अपना घर पूरा होके अपने अड़ोसी पड़ोसियों तक हम गए
0: अरे
1: हुए हैं।
0: वाह साहब वाह, या तो गजब की बात है। एक तरह से मतलब आसपास का आप तो जेवी खा रहे जो खा रहे,
1: हाँ जी
0: पर
1: हाँ जी
0: आसपास का जो पड़ोसी जमा के दाएं भी जेवी खिला रहे जावे।
1: हाँ, तो वो तो है, वो जैसे नींबू वगैरह है, घर पे
0: हाँ
1: कोई आए तो बिना नींबू के नहीं जाता है भाई साहब, इतने नींबू
0: हाँ
1: हमारे निकल रहे हैं।
0: हाँ हाँ
1: जैसे केला है
0: जी
1: तो वो जैविक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये मार्केट में जाने का है ही नहीं। उन्हें कि बाहर से अपन पेस्टिसाइड खाने से तो अपन चलो शुद्ध खाए, घर का खाए, और इसी उद्देश्य के साथ तो ये हमें हमने शुरू किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता और जो आपने जो फोन कॉल से जुड़े हुए थे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ राम राम साहब।
1: शानदार।
0: हाँ कहीं प्रश्न पूछ बुझे जो
1: प्रश्न तो उषा मैं सुनिया करूं, तुम्हारे लायक हो जो प्रश्न पूछ भी लियो तू, पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुनो तुम, आपको बहुत बढ़िया लागे छे। पर एक सुझाव छे, शिकायत
0: जी साहब।
1: शिकायत मानो, सुझाव मानो,
0: हाँ हाँ बोलो आप तो।
1: आपका जो प्रोग्राम सेट करे संचालक का बोले जी, जहाँ से
0: हाँ जी
1: वहां से मतलब ये थोड़ा सा ये निवेदन।

0: तैलिक
1: आई लोक गीत नु डेली सुन के मतलब फली साडा
0: तो आपने जो अबाने पेड़ पौधा वगैरह भी लगा रखे है ना, तो कसिया कसी सब्जियां जबान जो आप कताई अभी वर्तमान में ये फल दे रही चबान या आपने सब्जियां वगैरह लाग रही चबान आपने जो
2: अभी तो मेरे पास भिंडी लग रही है
0: जी, जी।
2: बैंगन है, टमाटर अभी तक थे लेकिन अभी गर्मी की वजह से वो टमाटर में फल अभी इतना बन नहीं पा रहा है, और केला है, नींबू है, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक जिसे बोलते हैं वो भी, उसमें भी फलियां अभी आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये जो आपने जो गार्डन लगाया तो माखी मच्छर भी हो जाता होगा, तो उसे फिर घर में कहीं दिक्कत तो ना हो कीड़ा मकोड़ा की जैसे?
2: नहीं, जैसे पौधे के ऊपर जब लगते हैं तो उसमें घर का ही पेस्टिसाइड बना के डाल देते हैं, जैसे लहसुन और हरी मिर्च पीस के उसको पानी में डाल के उसमें स्प्रे बॉटल में भर के वो डाल दो तो वो कीड़ा मकोड़ा उसका मर जाता है।
3: मतलब सभी तरह का पौधा में सेम चाल जाओगो?
2: हाँ चाल
3: अलग अलग तरीके
2: नहीं कभी नहीं, जैसे मिली बग करके एक सफेद कोई कीड़ा आता है उसके ऊपर जो अपना साबुन होता है बर्तन धोने का लिक्विड वाला, वो पानी में डाल के वो स्प्रे बॉटल में भर के डाल दो तो उससे जैसे हफ्ते में 2-3 बार करो ना तो वो मर जाता है उससे। सबके किसी पे अलग अलग कर
3: दो। हाँ, तो जैसे सब्जी पे अलग करता होगा,
2: फूलों पे अलग
3: करता होगा, तो जैसे सब्जी पे कैसे करो? जो
2: सब्जी पे तो अधिकतर अल्टरनेट कोई कोई कर लेते हैं कि इससे फायदा नहीं हुआ तो दूसरा वाला फार्मूला आजमा लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं।
0: तो श्रीमती यमुताई जी बंसोड, अब आपने ये जो चर्चा जो है जारी रखना, पर थोड़ा ले लें एक विराम।
4: क्या करें क्या ना करें, गर्मी से कैसे बचें?
5: मैं बताती हूँ, घर से बाहर जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े पहने, छाता और धूप का चश्मा जरूर पहने, समय समय पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें, और घर में बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
4: और क्या ना करें?
5: आसान है, धूप में जाने से बचें, बासी भोजन ना करें, चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन ना करें, कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
6: मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
7: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रीमती यमुताई जी बंसोड़, एक बार फिर कार्यक्रम में आपको साहब, और आपने जो भी श्रोता जो नया अभी आपने जो मीन्स रेडियो अभी ट्यून करो जे और फोन कॉल से जुड़वू चाहिए जे, तो वहीं एक बार आपना जो स्टूडियो का नंबर है वो 07432-232-593 पर फोन करके, और आज को जो आपने विषय है वो एक किचन गार्डन वालों, तो इम जो भी कोई लगाव चर्या हो या कोई के समस्या हो या कोई बात हो, मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो प्रश्न पूछ सके। और आपने जो पहली बातचीत चाह रही थी एक कि भाई किसी किसी सब्जियां आप लोगों ने लगा रखी जरा अपन वर्तमान में भी चाह रही है, तो ये जो साग सब्जियां है ये आपने लगाई रखी है और आगे भी एक अच्छी चाल है एक साग सब्जियां, तो आपने बताया जी बीच बीच में गया कि कोई मान लो कीड़ा वगैरह लग जाओ या तो इन के लिए आप है ना जो कोई बाहरी दवाई ना डाल के और आपने जो जैविक जो दवाई है उसे आप ही
3: जी।

0: कर दीजिए मतलब, है ना
1: जी।
0: और
2: आपका पास जो किचन गार्डन छे उको फायदो काई मल रहे हो छे, उको फायदो काई छे
1: जी? शीतल जी इसके तो फायदे ही है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है।

0: उसमें भी पौधे लगाए जाते हैं, तो किचन वेस्ट के बाहर से जो कचरा फेंकना नहीं पड़ता, गाड़ी में कचरे के गाड़ी में हमारा कचरा कुछ नहीं जाता है, थैलियाँ घर पे कम से कम लाते हैं, इसलिए पोल्यूशन भी कम होता है, और इसी तरह से हम पर्यावरण को भी थोड़ा सा फायदा इससे हो रहा है। जैसे घर में पौधे लगे हुए हैं, उसमें कितनी सारी चिड़िया आके बैठ रही है, तो उनको भी आश्रय मिल रहा है, और सुबह सुबह चिड़ियों की वो जो आवाजें हैं वो तो सुनने में सभी को अच्छी लगती है।
1: हाँ कबक मतलब ये जो आपको कि जैसे शारीरिक छे मानसिक छे
0: जी
1: अटकी अटी सो आपने जो वातावरण छे ये सभी एक शुद्ध हो रहा छे है ना।
0: शुद्ध
1: हाँ और आपने खुद को भी एक जैसे आपने बच्चा बच्चिया के ताई पढ़ा से ये यहाँ के पौधा के प्रति भी आपने
0: जी
1: एक
0: जी
1: मन
0: जी
1: और ऐसे हो जाओ जो कि बिल्कुल यहाँ के
0: हाँ
1: प्रति है ना जो
0: लगाव सा हो
1: लगा हो
0: जाता
1: जाओ
0: है
1: आप है
0: उनमें।
1: ना।
0: हाँ
1: क्योंकि उठता ही पहले अपनी और काई न दिखे कि बस
0: बस
1: पेड़ पौधा की सेवा करनी
0: हाँ,
1: जा पड़े हैं।
0: अभी गर्मी में तो
1: और
0: और ही ज्यादा, सुबह
1: हाँ
0: शाम दोनों टाइम पानी पिलाना, तो उन्हीं के बीच में अपना समय व्यतीत हो रहा
1: हाँ
0: है।
1: और फिर आप जानो जो देखो गर्मी ऐसी भीषण पड़ रही है तो
0: हाँ
1: आपने पर्यावरण के ताई लेकर और आपको कहीं मान बुझे कि भाई पर्यावरण भी एक आपने अच्छो रह सुरक्षित रह तो यहीं के ताई लेकर भी और आपके मन में कहीं
0: पर्यावरण के लिए तो सबसे पहला काम है पेड़ लगाना,
1: जी।
0: और मात्र पेड़ लगा के छोड़ देना नहीं है, नहीं तो आजकल अपन सामूहिक पेड़ तो वृक्षारोपण बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अपन पेड़ कितने चला रहे हैं या कितने जी रहे हैं, तो मात्र पेड़ लगाना नहीं है, कम लगाओ लेकिन वो चलना चाहिए, तो उनको बड़े करने की जिम्मेदारी खुद भी लेनी है। अब जैसे पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान है सिंगल यूज प्लास्टिक का, तो घर से निकलते हुए कपड़े का थैला ले जाइए साथ में आप, ठीक है कुछ जरूरत है तो जहाँ जैसे जरूरत है, जैसे दूध की थैली तो वो थैली में ही दूध आएगा, लेकिन जैसे सब्जियां लेने अपन जाते हैं तो क्यों अपन उसको प्लास्टिक के थैली में लाए, घर
1: जी
0: में लाते हैं तो उसको खोल के उसको फेंकना ही है, तो ऐसे चीजों से अपन बच सकते हैं। जो अपन कपड़े का थैला लेके जाते हैं तो सिंगल यूज थैलियां घर में कम आएगी। जैसे अभी गर्मी है तो घर में आम आ रहे रोज, तो आम की गुठली कचरे के बाल्टी में न डाल के उसको रखे, बस अगले महीने बारिश आने वाली है, कहीं भी घूमने जाइए तो वहां उसको गाड़ के आइए, तो उससे अपन पर्यावरण को सुरक्षित ही करेंगे, एक
1: बिल्कुल
0: पौधा तैयार होगा।
2: अब बाल मुकुंद जी, आपन थोड़ो सो बाजार को भाव भी बता दिया।
1: नहीं बाजार को भाव तो सुनेगा पर अब चालता चालता आपने जो श्रीमती यमुताई जी बंसोड़ जी तो ये एक आज को जो आपने विषय जो कि भाई जो आज ये आपने जैविक किचन गार्डनिंग आलो तो इनके ताई लेकर आपने जो भी महिला बहनिया छे अटके अटी सुन जो किसान भाई बहन छे वो बातें सुन रहे छे तो वहीं एक आप सलाह के तौर पर काई खबू छो एक चालता चालता आप
0: जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के करीब रहना
1: हाँ
0: सबसे बड़ा सबका ही शौक होना चाहिए, और इस मानसून में एक संकल्प सबको लेना है कि मैं इस बारिश में कम से कम 11 पौधे लगाएंगे और उसका बड़ा करेंगे
1: जी
0: और उनकी जिम्मेदारी लेंगे, देखभाल करेंगे, यही संदेश देना
1: बिल्कुल
0: चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: साहब
2: आपने बताया कि आप 11 पौधा लगाऊंगा और उनकी देखभाल भी करूंगा, केवल लगाऊंगा ही कोई नहीं, इन्हें
1: हाँ
2: लगा कर छोड़ दियो।
1: तो आज आप जो मा कार्यक्रम छे इमें पधारिया और उनक ये जो भी करसान भाई बन जो की समस्या जो समाधान करियो इनके लिए आपका ताई बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: तो वही शीतल जी अबाण आपने जो मेहमान छा यान बताई के जन जे जैविक किचन गार्डन आपन कैसे कर सका छा और उमें कहीं कहीं अपनी फायदा जो सारी बातें होगी अपन आप चालता चालता आज को जो आपने झालरापाटन मंडी को भाव छे वो गेहूँ बकिया छे 2300 से लेकर 2550 रुपया और सोयाबीन को भाव रहे छे 6200 से 7250 रुपया। सरसों बकी छे 6600 से लेकर 7200 और धनिया को भाव रहे छे 9000 से लेकर और 14000 तक। वहीं जो अलसी छे वह 7800 से 9000 और चना को भाव रहे छे 4900 से 5500 रुपया प्रति क्विंटल।
2: उसके साथ ही मेथी को जो भाव छे 5700 से ले 6300 तक, चिया सीड से 13000 से 18000 तक, और
1: मसूर को जो भाव छे वो 7500 से और 8900 रुपया प्रति क्विंटल रहो। वहीं
2: कलौंजी को भाव 11000 से 16500 छे।
1: और अब अपना कार्यक्रम को टर्म भी पूरा रहे तो आपका साथी बाल मुकुंद सुमन
2: और शीतल व्यासी,
1: दो आज्ञा
2: राम
1: राम राम।
2: राम।
3: किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
5: आशा भोसले की आवाजों में यादों की बारात फिल्म का गाना, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत RD बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शायरा अपूर्वा के लिखे इस गाने के साथ। स्नेहा शंकर ने इसे गाया है, संगीत अभिजीत श्रीवास्तव का है

अभी आपने नेहा कक्कड़ की आवाज़ में जानी और ललित सेन का लिखा गीत सुना, संगीत तनिष्क बागची और ललित सेन का था। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़, गीत रश्मि विराग का, संगीत पायल देव का।

हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का दूसरा भाग। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: గుడ్ ఈవినింగ్ అంకుల్.
1: ఓ గుడ్ ఈవినింగ్ విక్రమ్.
0: హలో ఆంటీ.
2: అచ్చే హో వికి.
0: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी.
1: अरे भाई ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: किवी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो. वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है.
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ. अरे कहाँ है सब लोग?
2: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ. मैं चलूं आपके
0: साथ? नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ.
1: He is a smart boy.
2: बहुत. देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है. अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा. किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो.
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
2: हूँ. हाँ, हाँ, अच्छा है अच्छा है. हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था.
1: मैंने गौर नहीं किया.
2: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं. मगर ये जरूर है जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना, आप अखबार

0: सुनो, कीवी कहाँ है?
1: जी, बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई।
0: ओह हेलो कीवी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
1: थैंक यू। आपके लिए क्या लाऊं?
0: नाराज हो कीवी?
1: नहीं तो, मैं क्यों होने लगी नाराज?
0: नहीं तुम नाराज हो क्योंकि मुझे आने में देर हो गई।
1: ये शोर, ये हंगामा, कह कह की भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेलेपन का शिकार होकर कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे?
0: I'm sorry, कीवी. Really?
1: मेरा जन्मदिन के साल में 10-12 बार आता है।
0: ये मैंने कब कहा?
1: तो फिर साल में एक बार भी तुम वक्त पर नहीं आ सकती?
0: ये बात नहीं कीवी कि मैं वक्त पे आना नहीं चाहता, पर क्या करता, बस उठते उठते कुछ खत आ गए थे, उनका जवाब आज ही जाना जरूरी था, बस वो खत्म करते ही मैं चला आया।
1: वो कल तक नहीं रुक सकते थे?
0: रुकने को क्या नहीं रुक सकता?
1: वक्त तो नहीं रुक सकता ना। चाहती तो मैं भी यही थी कि घड़ियां ठीक 6:30 बजे रुक जाए और जब तक तुम ना आ जाओ वो वहीं रुकी रहे। पर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, तुम आ ही गए, मेरे पर यही बहुत एहसान है, वरना सबके सामने मेरी नाक कट जाती। पहले ही मेरी फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ कहती है।
0: वो खुद बेवकूफ?
1: नहीं, मैं सोचती हूँ मैंने ही अपने आप को बहुत गिरा लिया है, तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो।
0: कैसी बातें करती हो कीवी, तुम्हें क्या मालूम सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने कितनी इम्पोर्टेंट रिसेप्शन कैंसिल की।
1: ना ना ना, मेरी खातिर क्यों मिस करते हो इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी? जाओ जाओ, हो
0: ओफो, मेरा मतलब ये नहीं था कीवी, तुम तो जरा सी बात को लेकर।
1: जरा सी बात है, ठीक है, जरा सी बात ही तो है। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय ला।
0: कीवी सुनो तो, ओफो क्या मुसीबत है, कौन समझता है।

0: मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है।
1: इस वक्त तुम्हारा ऐसा सोचना शायद ठीक हो, लेकिन ऐसा छोटा सा घर पा लेने के बाद फिर जल्द ही वो घर बहुत छोटा सा नजर आने लगता है। तब कई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और उस वक्त उनको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
1: अगर भरोसा न होता तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ के जाता? पर जरा सोचो तो, एक खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत कपड़े पहनकर क्या भद्दा हो जाता है? तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरा हो, उसे मैं पीतल की अंगूठी में जड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मुझे सोने की वो अंगूठी पैदा करनी है जिसमें जड़कर तुम्हें हर तरह की खुशी मिले और मुझे फख्र हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो कमल डार्लिंग।
0: डार्लिंग?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: तुमने मुझे डार्लिंग कहा विक्रम?
1: कोई पाप कर दिया मैंने?
0: भगवान के लिए मुझे कभी डार्लिंग न कहना।
1: क्या मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम्हें प्यार से पुकार भी नहीं सकता?
0: नहीं, ये प्यार नहीं।
1: तो
0: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों, ये शोर, ये हंगामा, कह कहे की भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेलेपन का शिकार होकर कोने में दुख का पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे?
1: I'm sorry, कीवी. Really?
0: मेरा जन्मदिन के साल में 10-12 बार आता है।
1: ये मैंने कब कहा?
0: तो फिर साल में एक बार भी तुम वक्त पर नहीं आ सकते?
1: ये बात नहीं कीवी कि मैं वक्त पे आना नहीं चाहता, पर क्या करता।
2: यार विक्रम, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
3: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
4: ओह नो,
2: ओह यस,
4: ओके ओके, क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया है

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ गई? तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
0: I don't believe you.
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो, करीब आओ।
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
3: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
3: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
3: डोंट बी सो सीरियस, आओ
1: बाहर चलो।

0: साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

यादों की परछाइयां। अभी आपने सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा भाग सुना, निर्देशन दीनानाथ का। इस नाटक का तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिलसिला फिल्म के गीत से, जिसे गाया लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत शिव हरी का।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन है।

0: या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।
1: ओ, तू बदन है, मैं हूं छाया, तू ना हो।
2: सिलसिला फिल्म के गीत से, जिसे गाया लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत शिव हरी का।

उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है

0: उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है।
1: संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा, आर डी बर्मन के संगीत से सजा जोशीले फिल्म का गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शैलेंद्र का लिखा है, एस डी बर्मन के संगीत से सजा गाइड फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आइए अब आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का गीत। गीत लिखा साहिर ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते

0: की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित
0: तरीके। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से
0: क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
4: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
5: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों उनके वित्त
0: करी पर रोक लगाने के लिए ताकि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग

0: वाराणसी के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की

0: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है और कार्यक्रम सबरस में आइए अब सुनते हैं केके की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। रात के 9:30 होने को हैं। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।